मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 32 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और

0: और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रखकर दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आज डॉक्टर छेदीलाल वर्मा से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता सुनिए। बातचीत का विषय है समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। जहां आपके पास समस्याग्रस्त भूमि है यानी सुधरी हुई ऊसर भूमि है या नहर के किनारे की ऐसी जमीन है जहां पानी लग रहा है और लवण युक्त हो गई है, तो उसमें धान उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीएल वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये समस्याग्रस्त भूमि है क्या?
4: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जब हम बात करते हैं समस्याग्रसित भूमि की, तो उसमें ऊसर भूमि का विशेष स्थान है। एक आंकड़े के अनुमान से अगर आप देखें तो लगभग एक समय में यहाँ पर जो है 13 लाख हेक्टेयर भूमि माने 52 लाख बीघा पक्का बीघा भूमि जो है ऊसर थी
3: जी।
4: इसमें फसलों का प्रबंधन अलग तरीके से होता है। पहले तो मृदा को सुधारना आवश्यक होता है, जिसके लिए विधियां हमें ज्ञात हैं, काफी काम कर रखा हमारे संस्थान ने। जिप्सम लगाया जाता है जो सुलभ है, और हमारे प्रदेश सरकार ने भी लगातार विगत कई वर्षों तक सतत कार्यक्रम चलाए रखा। भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई और उसी के माध्यम से बहुत सारा एरिया, लगभग 60% जो क्षेत्रफल था उत्तर प्रदेश का, उसको वापस सुधार करके जो है फसल के अंतर्गत लाया गया। तो इसकी एक विशेष समस्या होती है ऊसर भूमि में, जो धोने वाला सोडा मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसके कारण से जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं है, वो फैल जाते हैं
3: जी।
4: तो उसका परिणाम ये होता है कि पानी बहुत धीरे धीरे नीचे रिसता है। एक तो ये बात हो गई इसकी पहचान के लिए। दूसरी, ऊसर भूमि में आधा मीटर से लेकर के 1 मीटर के गहराई तक कहीं न कहीं आपको कंकड़ की एक जो सतह मिलेगी
3: जी।
4: तो ये कंकड़ की सतह जो होती है, ये पुनः जो है इसके ये दो काम करती है। ऊपर से जो पानी जाना चाहिए उसको बाधित करती है और पौधों की जड़ों को नीचे जाने से रोकती है। तो इस तरह से ये भूमि सर्वथा भिन्न होती है, इसलिए इसका प्रबंधन हमें विशेष ध्यान से करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, जहाँ सुधरी हुई ऊसर भूमि है तो उसमें धान उत्पादन के पहले हरी खाद का प्रयोग होना चाहिए?
4: हरी खाद के लिए हमारा संस्थान विशेष रूप से किसानों को बताता है।

0: है, क्योंकि जो सुधारी गई ऊसर भूमि होती है उसमें जैव कार्बन होता है, उसकी मात्रा अति न्यून होती है, और बिना उसकी मात्रा हुए उसमें बैक्टीरिया जो हमारे मृदा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसमें खाद जरूर डालें, उससे जो है आपका जो रिक्लेमेशन और फास्ट होगा, और जो रासायनिक उर्वरक है उनकी मात्रा घट जाएगी, उसमें जीवाश्म की मात्रा बढ़ेगी, और उसमें बैक्टीरिया जो फसलों के लिए आवश्यक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो ओवरऑल फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है।
1: और अन्य जो कार्बनिक खादें हैं, गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट, इसका भी इस्तेमाल बढ़े?
0: निश्चित रूप से कार्बनिक खादों का प्रयोग तो बढ़ना ही चाहिए। जिनके पास सुलभ है खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट, FYM, शहर से निकलने वाला कचड़ा है, वहां पर भी इस तरह की खादें बनाई जा रही जो सुलभ है, तो उसको भी लेकर के खेतों में डाल करके उनको गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन की बात चल रही है, तो ऐसी भूमियों में कुछ खास प्रजातियां धान की लगानी होगी?
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम लवण सहनशील प्रजातियां, लवण सहनशील माने जो ऐसी प्रजातियां धान की जो जहां पर थोड़ा बहुत उसरीलापन है, तो उसमें भी जो ये प्रजातियां सहजता से उगती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं, तो इसमें हमारे संस्थान ने बहुत सारी प्रजातियों का विकास किया है। उनमें से कुछ के नाम मैं बताता हूं, जैसे CSR 36, CSR 46, CSR 76, CSR 56, CSR 43 और CSR 60, जिसमें से CSR 43 ये थोड़ा जल्दी से पकने वाली प्रजाति है और लगभग 115 से 120 दिन में ये पक जाने वाली फसल है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: नंबर है मेरा 99 36 98 70 28, 9936987028।
1: डॉक्टर CL वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर छेदीलाल वर्मा से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। इसी के साथ अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने आज का सुविचार, निष्काम कर्म।
3: वोल्टेयर कठोर परिश्रमी था, आजीवन वह अत्यंत भाव से कर्म करता रहा। यही कारण है कि अपने युग में जितना उसने अकेले कर दिखाया उतना अन्य किसी ने नहीं। उसका कहना था, किसी काम में नहीं लगे रहना और जीवित न रहना एक ही बात है, आलसी के सिवा और सब लोग अच्छे हैं। संसार में जीवन के भार को वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि निरंतर अपने को व्यस्त रखा जाए। ज्यों-ज्यों मेरी अवस्था बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मैं काम करना आवश्यक समझता हूं। अंत में यह जीवन का आनंद बन जाता है। यदि तुम आत्महत्या नहीं करना चाहते तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहो। संसार में श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं उसी को सामान्य जन धर्म समझते हैं और वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसीलिए संतों को भी कर्म का त्याग न करके उसका विशेषतः आचरण करना पड़ता है। संसार में कर्म से वही लिप्त होता है जो गुणों के भ्रम के वश में हो जाता है और प्रकृति के अधीन होकर काम करता है। ज्ञानी पुरुष देह का अभिमान छोड़कर कर्म करते हैं। महाभारत में कहा गया है, जैसे बछड़ा समस्त गौओं के बीच अपनी माता को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। स्वामी रामतीर्थ का कथन है, निष्काम कर्म ईश को ऋणी बना देता है और ईश उसको सहज ब्याज सहित वापस करने के लिए विवश हो जाता है। अनासक्त होकर कर्म करने

0: से ही हमें कर्म पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। प्रयोजन से या अभाव से हम जो कर्म करते हैं, वही कर्म हमारे बंधन का कारण है। आनंद से जो करते हैं, वह बंधन का कारण नहीं हो सकता। वस्तुतः वही कर्म मुक्ति है। एक कहावत है, कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। महावीर स्वामी के अनुसार प्राणियों के कर्म ही सत्य हैं। शीघ्रता से कर्म करने वाला तपस्वी अर्थात परश्रमी और स्फूर्तिमान मानव विश्व को हिला देता है। धरा पर जीने का अधिकारी केवल कर्म करने वाला ही है। जो कर्तव्य निष्ठा त्याग कर भोग वृत्ति रखता है, वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न फलों में नहीं। कर्म का फल तेरा हेतु न हो, कर्म न करने का भी आग्रह न हो। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। जिस प्रकार दिवाकर में प्रकाशमान तेज समाहित है, उसी प्रकार मनुष्य में कर्म समाहित है। कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, उभय के बीज वृक्ष का धर्म। भाग्य की बात भाग्य के हाथ, पुरुष का हो पौरुष से साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, निष्काम कर्म। वाचन स्वर था प्रभात शुक्ल का। मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। संकटों को हरने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण ही मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। हनुमान जी वो नाम है जिनसे भय तो मिटता ही है, जीवन के दुख भी दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर जाता है। उनकी भक्ति, उनका पराक्रम और उनका समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करें आज की आराधना हनुमान जी के पावन भजन के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, कौन नहीं जानता संकट मोचन बजरंग बली जी को। श्रोताओं, सांसारिक धन दौलत क्षण भंगुर है, लेकिन प्रभु भक्ति का धन अमूल्य और चिरस्थायी है। भक्त के इसी आनंद और आत्मिक समृद्धि का सुंदर भाव लिए ये भजन सुनिए।

जी हाँ श्रोताओं, जिसने राम रतन धन पा लिया उसका जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। कहते हैं कि ईश्वर की महिमा और उनकी असीम सत्ता का स्मरण करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए सदा अपने हृदय को स्वच्छ रखें, ईश्वर का स्मरण रखें, क्योंकि स्वच्छ हृदय में ही ईश्वर का वास होता है।

श्रोताओं, भारत की आध्यात्मिक परंपरा में चार धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का एक पावन मार्ग मानी जाती है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका, ये चारों धाम भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना के अमूल्य प्रतीक हैं। तो आइए इसी दिव्य भाव और श्रद्धा को अपने मन में संजोते हुए सुनते हैं एक सुंदर भक्तिमय प्रस्तुति।

श्रोताओं, राम का नाम भले ही दो अक्षरों का है, लेकिन राम नाम की महिमा अत्यंत विशाल है। जो इनकी शरण में आता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं राम के नाम से तो पाथर भी गिर जाते हैं।

श्रोताओं, जीवन क्षणभंगुर है और समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसलिए हर पल को सार्थक बनाते हुए अच्छे कर्म और प्रभु स्मरण को अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए।

इसी पावन भक्ति रचना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 224। आज का प्रसंग है अयोध्या के सुकुमार राज

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

विभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नमस्ते लखनऊ में। प्रातः के 7 बज चुके हैं और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं जंगल जलेबी के विषय में। स्वाद पोषण और प्राकृतिक मधुरता से भरपूर जंगल जलेबी, आइए सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो नाम से तो मजेदार लगता है और स्वाद में भी खट्टा मीठा है, लेकिन जिसके गुण इतने व्यापक हैं कि ये हमारे देसी सुपर फूड्स की सूची में शामिल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जंगल जलेबी की, जिसे कुछ जगहों पर गुंगुचा, सिराली, विलायती इमली या मद्रासी इमली के नाम से भी जाना जाता है। जंगल जलेबी एक जंगली फल है, लेकिन इसका स्वाद और उपयोग दोनों ही इतने बहुमूल्य हैं कि अगर हम इसे अपनी थाली में नियमित रूप से शामिल करें तो न केवल हमें पोषण मिलेगा बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। ये फल हल्का घुमावदार चक्री जैसी आकृति का होता है और देखने में सचमुच किसी जलेबी जैसा लगता है, शायद इसी कारण इसका ये नाम पड़ा। पेड़ से तोड़ते ही जब इसे खाया जाए तो इसका खट्टा मीठा स्वाद जुबान पर चटपटापन छोड़ जाता है और यही कारण है कि बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर हम इसके पोषण की बात करें तो जंगल जलेबी में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। खास तौर पर बदलते मौसम में जब सर्दी जुकाम जैसी तकलीफें बढ़ जाती हैं तो इस फल का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन के लिए बेहद लाभकारी होता है। कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में ये फल राहत देने वाला होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अक्सर रास्ते चलते तोड़ कर खा लिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका उल्लेख औषधीय पौधे के रूप में भी मिलता है। इसके बीज और छाल का प्रयोग पेट के कीड़ों को दूर करने, बुखार में राहत देने और त्वचा संबंधी समस्याओं में भी किया जाता है। जंगल जलेबी के बीजों से निकाले गए अर्क का उपयोग कभी कभी दस्त, डायरिया और पेट की अन्य समस्याओं में भी किया जाता है। इसकी छाल से बनने वाले काढ़े का प्रयोग भी कई पारंपरिक नुस्खों में होता है, विशेष रूप से जब शरीर में सूजन हो या पाचन तंत्र असंतुलित हो। जंगल जलेबी का पेड़ बहुत घना और छायादार होता है और ये अक्सर गर्म या शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां और फल गर्मियों में प्राकृतिक शीतलता देने का काम करते हैं, यही वजह है कि कई समुदाय इसे गर्मी के मौसम में नियमित तौर पर खाते हैं और अपने शरीर को भीतर से ठंडा रखते हैं। ये फल शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाव करता है। एक और खास बात ये है कि जंगल जलेबी शुद्ध रूप से प्राकृतिक है।

0: इसमें किसी भी तरह की मिलावट या कृत्रिम रसायन नहीं होते। ये सीधा पेड़ से आता है और प्रकृति के सबसे साफ तोहफों में से एक है। आज जब बाजार में कई तरह की रंगीन टॉफियां, चटपटे स्नैक्स और रासायनिक खाद्य पदार्थ बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं, ऐसे में जंगल जलेबी जैसे प्राकृतिक और स्वादिष्ट फल का सेवन उन्हें एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प दे सकता है। श्रोताओं, शहरी इलाकों में भले ही ये फल अब थोड़ा दुर्लभ हो गया है, लेकिन गांवों में ये आज भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो चीजें एक समय पर हमारे जीवन का हिस्सा थीं, वो अब खोती जा रही हैं। जंगल जलेबी जैसे फलों की वापसी हमारे आहार में होनी चाहिए, न केवल स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य और परंपरा के लिए भी। श्रोताओं, जंगल जलेबी एक ऐसा फल है जो हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य के खजाने कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और अपनाने की। ये फल न केवल पोषण देता है बल्कि स्वाद की भी एक अलग परिभाषा रचता है। ये शरीर को ठंडक, ऊर्जा और संतुलन देने वाला फल है जो बिना किसी अतिरिक्त प्रसंस्करण या पैकिंग के सीधे पेड़ से हमारी हथेली में आता है। तो आइए इस गर्मी में जब भी आपको कहीं जंगल जलेबी दिखे, चाहे किसी गांव की पगडंडी पर या किसी बाजार में या फिर किसी रिश्तेदार के आंगन में, उसे जरूर चखिए। बच्चों को इसका महत्व बताइए और बताइए कि हमारे देसी फलों में कितना स्वाद, कितनी विरासत और कितनी सेहत छिपी हुई है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही प्राकृतिक खजाने के साथ। तब तक स्वाद और सेहत दोनों के साथ जुड़े रहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहारों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: जंगल जलेबी स्वाद, पोषण और प्राकृतिक मधुरता से भरपूर। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। लोक रंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे वंदना मिश्रा के गाए अवधी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोकमाधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:45 पर। बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता आज दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहने सुनेंगी रूपक ऐसी लागी लगन। आलेख डॉक्टर नेहा दीक्षित का होगा एवं प्रस्तुति ममता उपाध्याय की होगी। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर संजय अरोड़ा से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा प्रवीण कुमार राय से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। बातचीत का विषय रहेगा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में पारदर्शिता और सोशल ऑडिट। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता सुनिएगा खरीफ में पोषक अनाज उत्पादन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार कनौज।

या भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी की वार्ता सुनिएगा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर सरस्वती नदी। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मुक्ता चटर्जी के गाए गीत व भजन। रात्रि 9:30 से श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम होगा हेलो मेरी पसंद। रात्रि 10 बजे से आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा अनुपम तिवारी के बांसुरी वादन का। प्रातः 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज सुबह। और अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक अवदान। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में। कहते हैं कुछ लोग लंबा जीवन जीकर इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग कम समय में ऐसा काम कर जाते हैं कि समय भी उन्हें भुला नहीं पाता। जरा सोचिए, अगर किसी लेखक ने अपने पूरे जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी हों, तो क्या वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कहानीकारों में गिना जा सकता है? सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इसका उत्तर है जी हाँ। आज हम ऐसे ही विलक्षण साहित्यकार की चर्चा करेंगे जिनकी रचनाएं संख्या में कम लेकिन प्रभाव में अत्यंत विशाल है। आज हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और उनके साहित्यिक अवदान की। श्रोताओं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन साहित्यकारों में अग्रणी है जिनका नाम हिंदी कहानी के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी लेखक की महानता उसकी रचनाओं की संख्या से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और स्थायी प्रभाव से आंकी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुलेरी जी केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, भाषाविद और उत्कृष्ट अध्यापक भी थे। भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी। वे विभिन्न विषयों पर गंभीर शोध करते थे और उनके लेखों में विद्वता के साथ साथ सहजता भी दिखाई देती है। यही विशेषता उन्हें अपने समय के दूसरे साहित्यकारों से अलग पहचान देती है। श्रोताओं, यदि हिंदी कहानी की चर्चा हो और उसने कहा था कहानी का नाम ना आए, तो ये चर्चा अधूरी मानी जाती है। ये कहानी हिंदी साहित्य की अमर धरोहर मानी जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक साधारण सा वाक्य

उसने कहा था पूरी कहानी की आत्मा बन जाता है, है ना? यही कारण है कि साहित्य के विद्यार्थी ही नहीं, सामान्य पाठक भी इस कहानी को पढ़ने के बाद लंबे समय तक भूल नहीं पाते। उनकी सहज भाषा स्वाभाविक और बोलचाल के बहुत निकट है। वह अनावश्यक अलंकरण के बजाय विचारों की स्पष्टता और भावों की गहराई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आज के इस सफर में हम कुछ ऐसे ही सफर को तय करेंगे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्यिक अवधानों को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करता है।

श्रोताओं, किसी लेखक की पहचान केवल उसकी कहानियों से नहीं होती, बल्कि उसके विचारों से भी होती है। रोचक बात तो ये है कि उनकी कुल कहानियों की संख्या बहुत कम है, फिर भी वे आज भी हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पढ़े और पढ़ाए जाने वाले रचनाकारों में शामिल हैं। ये किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है और होती भी है। उनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं और नई पीढ़ी उन्हें उतनी ही रुचि से पढ़ती है जितनी दशकों पहले पढ़ा करती थी। गुलेरी जी ने अनेक निबंध, शोधपरक लेख और भाषा वैज्ञानिक लेखन भी किया। उनके लेख पढ़ने पर यह अनुभव भी होता है कि वे केवल जानकारी नहीं देते बल्कि पाठक की जिज्ञासा भी बढ़ाते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक और प्रेरक पक्ष था श्रोताओं, वो था ज्ञान के प्रति निरंतर जिज्ञासा। वे मानते थे कि सीखने की कोई सीमा नहीं हो सकती। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि उत्कृष्टता के लिए बहुत अधिक लिखना आवश्यक नहीं, बल्कि ऐसा लिखना आवश्यक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। उनकी लेखनी में ज्ञान था, संवेदना थी, भाषा की गरिमा थी और सबसे बढ़कर मनुष्य के प्रति गहरा विश्वास था। यही विश्वास उनकी रचनाओं को कालजयी बनाता है। तो श्रोताओं, आज यानी 7 जुलाई के इस अवसर पर हम महान साहित्यकार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि साहित्य केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी होता है। अब इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम विविधा से मुझे दीजिए अनुमति। आशा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन और साहित्य से जुड़ी ये बातें आपको रोचक लगी होंगी और उनकी रचनाओं को पढ़ने की प्रेरणा भी मिली होगी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। फिर होगी मुलाकात एक नए विषय, नए जानकारी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: कारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही

0: हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
0: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
1: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी, इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
2: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो एमबीबीएस की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
3: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
4: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहेब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
5: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीली

0: टीवी का साया कल करके दे देंगे। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन सिर्फ जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। सुबह की ताजगी और एक नई उम्मीद के साथ आज का दिन एक बार फिर हमारे सामने है और साथ में हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और मेरे साथ है
1: श्रद्धा श्रीवास्तव। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: अच्छा श्रद्धा, जरा सोचकर बताइएगा कि हम दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम खुद से जुड़ने के लिए कुछ मिनट, कुछ समय निकालते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा रिंकी, हम हर समय बस व्यस्त रहते हैं लेकिन मन कहीं खाली खाली सा रहता है। और आज की इस तेज रफ्तार जो जिंदगी में, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम सूचनाओं से तो भर गए हैं लेकिन मन को शांत रखने का समय कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कह रही है। तो हम अपने दोस्तों से भाई यही कहना चाहेंगे कि दिन की शुरुआत कुछ मिनट सकारात्मक सोच, हल्की सैर, योग, प्रार्थना और फिर सबसे जरूरी बात,
1: बिल्कुल
0: परिवार के साथ दो बातें करके हो तो पूरा दिन अधिक ऊर्जावान और संतुलित बन सकता है। तो क्यों ना आज से हर सुबह खुद को भी थोड़ा समय देने का संकल्प लिया जाए और ये कहा जाए अपने परिवार को भी समय देंगे।
1: जी हाँ, अपने परिवार को, अपने लोगों को और परिवार के साथ साथ जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते, तो उनसे बात तो जरूर कर ली जाए, क्यों उनकी।
0: बिल्कुल, देखिए ना, कई बार लोग कहते हैं देखो इतना काम है जिंदगी में, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे बाकी का काम चलेगा, लेकिन

0: दोस्तों, ये बात भी तो जरूरी है ना कि आपके अपने इस सफर में साथ रहे, क्योंकि सफर लंबा है
1: जी
0: और
1: हाँ, इसलिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है।
0: जी उसमें सब साथ होते हैं ना, तो सफर बहुत आसान हो जाता
1: जी
0: है।
1: हाँ, हंसते कहते हैं ना, हंसते मुस्कुराते कैसे समय बीतता है पता ही नहीं चलता है। जैसे जब हम आपसे जुड़ जाते हैं ना, तो है ना रिंकी, समय का पता ही नहीं
0: बिल्कुल।
1: चलता।
0: और आप कह रहे होंगे कि सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों बता रहे हो, आप लोग क्यों कह रहे हो, तो भाई सुबह का समय ही ऐसा होता है जब पूरे दिन की शुरुआत तय होती है। अगर
1: जी
0: दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो काम भी अच्छे होते हैं और मन भी खुश रहता है।
1: जी हाँ भाई, बिल्कुल। और इन दिनों मानसून भी दस्तक दे चुका है नारंगी, तो कहीं बारिश, कहीं उमस, तो कहीं बदलता मौसम। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी सर्दी, जुकाम, वायरल या दूसरी मौसमी परेशानियों की वजह बन सकती है।
0: जी हाँ, तो आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय के साथ जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे श्रद्धा ने अभी भी कहा कि भाई मौसम बदल रहा है और बारिश में बहुत सारे संक्रमण की चीजें हो सकती हैं, कई सारी तरीके की परेशानियां हमें हो सकती हैं, तो ऐसे मौसम में बहुत ध्यान रखें। और वाकई सफर तो बहुत सुहाना है ही, लेकिन इस सुहाने सफर का मजा तभी आएगा जब हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, है ना।
1: जी हाँ, और रिंकी अपने श्रोताओं को ये भी बता देते हैं, जैसे ये जो गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। जैसे ना, मच्छरों से बचाव रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, और भीगने से बचें। अगर भीग भी जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से नहा लें और गर्म और ताजा भोजन भी करें, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। और देखिए, इससे संबंधित हम अभी बहुत सारी बातें और करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम अपने श्रोताओं को मनोरंजन की तरफ भी ले चलें,
1: जी
0: क्यों?
1: हाँ भाई, काम का समय है तो थोड़ा मनोरंजन भी बनता है।
0: जी।

0: वाकई श्रद्धा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी और साथ आपका और अपने श्रोताओं का।
1: बिल्कुल, कहते ना खूबसूरत हो जाता ना सफर जब साथ अपनों का हो।
0: बिल्कुल।
1: और आप सुन रहे

0: थे फिल्म मधुमति से गीत जिसे स्वर दिया था मुकेश ने।
1: जब सुबह सवेरे ऐसे मीठा मीठा सा गीत संगीत कानों में पड़ता है ना श्रद्धा, तो बस वाकई दिन बन जाता है और अच्छे अच्छे से ख्याल भी दिमाग में आने लगते हैं।
0: जी हाँ, और अच्छे विचारों से जब दिन की शुरुआत हो तो दिन और भी बेहतर बन जाता है। तो रिंकी, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए आज का सुविचार क्या है।
1: भाई आज का सुविचार कहता है कि अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी साथ रहता है।
0: बिल्कुल, चाहे समय पर उठना हो, नियमित व्यायाम करना हो, संतुलित भोजन लेना हो, या जीवन की ओर ले जाती कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन उठाया गया छोटा सा सही कदम भविष्य को बेहतर जरूर बनाता है।
1: वाह वाह वाह, क्या

0: सही कदम भविष्य को बेहतर जरूर बनाता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। एक छोटी सी लाइन, अच्छी आदतें धीरे धीरे बनती हैं लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी रहता है।
0: जी
1: आपने
0: हाँ,
1: इतने अच्छे शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया कि वाकई दोस्तों, अगर हम छोटी छोटी आदतें आज से ही डाल ले, बच्चों में आज से ही छोटी छोटी आदतें डाल दे, तो आने वाले समय में जो जीवन के संघर्ष है ना,
0: हाँ वो
1: उसमें
0: सरल
1: बहुत
0: हो जाते
1: सरल हो
0: हैं।
1: सरलता हो जाती है। तो क्यों ना आज से ही एक अच्छी आदत अपने जीवन में शामिल कर ली जाए।
0: जी हाँ
1: और कुछ आदतें ऐसी भी हैं जिसमें जागरूकता बहुत जरूरी है
0: जी
1: श्रद्धा।
0: बिल्कुल। कहते ना रिंकी, जैसे ये गर्मी का मौसम है ना, इसमें आग से होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो हम सभी के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो भी उपाय हैं उनके बारे में जाने।
1: बिल्कुल। और जैसे छोटी छोटी आदतों की हमने बात की कि
0: हाँ
1: जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप स्विच ऑफ कर दें, गैस
0: बिल्कुल,
1: बर्नर जरूर चेक कर लें कि
0: हाँ
1: उसको बंद किया है आपने कि नहीं। ऐसी छोटी छोटी अगर आदतें हम विकसित कर लें तो ऐसी जो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं उनसे बचा जा सकता है ना।
0: हाँ तो इसलिए रिंकी, हम अपने श्रोताओं को आज सुनवा रहे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी से, जो कि DIG हैं फायर सर्विसेज में, उनसे कुछ उपयोगी जानकारी।
1: जी, बहुत उपयोगी जानकारी, तो जरूर सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
2: हमारे साथ हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जो कि DIG हैं फायर सर्विसेज के। सर का बहुत बहुत स्वागत है।
3: वेरी गुड मॉर्निंग।
2: तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम तौर पर घरों में आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, और एक आम नागरिक अपने घर को पूरी तरह से फायर सेफ कैसे बना सकता है?
3: शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण उभर कर आया है। इसके लिए उपयुक्त तो तरीके के बिजली के तार लगाएं और उसके जितने भी उपकरण है वो IFI प्रमाणित लगाएं। किसी भी एक सॉकेट पर ज्यादा लोड न रहे, AC को बराबर चेक कराते रहें ताकि कोई इस तरह के जो है आग न लगे। दूसरा कारण है रसोई गैस। रसोई गैस में रेगुलेटर या पाइप का पुराना होना, खराब होना, कटा होना, ये एक कारण है। रात में हमेशा बंद करके रेगुलेटर को और ऊपर से भी बंद करके गैस को, और नीचे से जहां पर उसका सिलेंडर है वहां से बंद करके तभी सोए। इसके अलावा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल, पेंट, सैनिटाइजर, परफ्यूम, पटाखे आदि का गलत भंडारण, सिगरेट, बीड़ी, ओवर हीटिंग के कारण जो भी बिजली के उपकरण है वो चलते हैं, इन सब में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है तो इससे बचा जा सकता है।
4: सर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर घर या किचन में कहीं भी आग लग जाए तो सबसे पहला कदम यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर घबरा जाते, पैनिक कर जाते, ऐसे में खुद को शांत करके क्या कदम ले?
3: अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल है तो, और आपके पास पर्याप्त हिम्मत है, आप शांति से अपना काम करें, अगर आप उसको हिम्मत से चला सकते हैं तो आप तत्काल कोशिश करें कि उसको चलाएं। अगर कोई और है उसकी मदद मांगे और तुरंत फायर सर्विस को सूचना दें। अगर आप चलाने की स्थिति में नहीं है या आपके पास एक्सटिंग्विशर नहीं है तो तुरंत बाहर निकल जाएं, तुरंत बाहर निकल जाएं और मदद के लिए गुहार करें और फायर सर्विस को 101 पर या 112 पर कॉल करें, अथवा जो भी आपके पास नंबर उपलब्ध हो उन पर कॉल करें।
2: सर अभी आपने फायर एक्सटिंग्विशर की बात की है, तो सर अगर इसको चलाने की ट्रेनिंग लेनी है तो वो कैसे ले और कहाँ से ले सकते हैं?
3: फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल चलाना बहुत आसान है, उस पर लिखा भी होता है इसको कैसे चलाना है। जो दुकान जहाँ से आप खरीदेंगे वो आपको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नजदीकी फायर स्टेशन से संपर्क करें तो वो भी आपको चलाने की जानकारी देंगे। इस तरह के मॉक ड्रिल भी बीच बीच में आयोजित किए जाते हैं।
4: सर इसी से जुड़ा एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि अगर घर में फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम ये भी कर सकते हैं, तो क्या हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है?
3: अगर रखे हैं तो सेफ है, लेकिन कम हम नहीं कहेंगे। अगर आप बाकी सावधानियां बरतते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप नहीं भी रखते हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना एक एक्स्ट्रा सावधानी है।
4: जी
2: सर, अगला सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी बहुमंजिला इमारत में या मॉल में आग लग जाए और चारों तरफ धुआं फैल जाए तो सुरक्षित बाहर निकलने का क्या सही तरीका होगा? सर
3: बाहर निकलना है तो सबसे पहले या तो नीचे या ऊपर, जिधर से भी आपको आइडिया है, अगर आपके नीचे भी आग है तो आप ऊपर को की तरफ निकलें और सबसे सेफ होगा कि आप छत पर निकल जाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको नीचे निकलना ही, या बालकनी में थोड़ी देर के लिए आप जा सकते हैं। बालकनी को भी एक सेफ एक एग्रीगेशन पॉइंट माना जाता है, लेकिन वो भी लंबे समय तक काम नहीं करता है। वॉशरूम में भी आप जा सकते हैं या ऐसी जगह पर जहां पर आग नहीं है, लेकिन उसमें फिर धुआं किसी तरह से न जाए। उसको अंदर से इस तरह से बंद करें, खास करके गीले कपड़े से, कि जिससे उसमें धुआं बिल्कुल न जाए, और अपनी लोकेशन बताते हुए तुरंत मदद मांगे।

0: है वहाँ पर, क्योंकि धुआं के कारण ही मैक्सिमम एस्फिक्सिया से ही डेथ होती है।
1: सर एक और बात जानना चाहेंगे कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अक्सर कहीं आग लग जाती है तो लोग पहले खुद उसको बुझाने का प्रयास करते हैं और उसमें वक्त काफी गवा देते हैं, तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को देर से सूचना मिलती है, सही समय पर कॉल करना क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या व्यवस्था है?
0: आपको तुरंत कॉल करना चाहिए, स्वयं बुझाने का प्रयास आपको अधिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत छोटी आग है, आप थोड़ा सा आप जल्दी बुझा सकते हैं, या दो तीन लोग हैं तो एक दो लोग बुझाने में लग गए और बाकी किसी ने कॉल कर दिया। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि आप पहले कॉल करें, उसके बाद बुझाने का प्रयास करें।
2: सर आजकल गर्मियों के मौसम में देखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट बहुत हो रहा है और एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसे हादसे से बचने के लिए जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उसके बारे में प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: एसी की सर्विस आप लगातार कराते रहें, उसमें जो भी आप बिजली के उपकरण लगाते हैं वो ISI प्रमाणित हो, आप उसको कम डिग्री पर न चलाएं, 18 डिग्री पर लोग चलाते हैं, उसको ज्यादा डिग्री पर चलाएं। इसके अलावा उसको रेस्ट भी जरूर दें। लगातार चलाने से बिजली का कोई भी उपकरण गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये चांसेस रहते हैं कि उसमें आग लग जाए। इसके अलावा जितना लोड आपका है, जितने लोड के आपके उपकरण हैं, आपको अपने घर में अपने प्रतिष्ठान में बिजली का वही उतने उपकरण लगाना चाहिए जितना आपका लोड है।
1: सर इसी के क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि कमर्शियल जगहें जो होती हैं या रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, इसमें फायर NOC के क्या नियम हैं और एक आम नागरिक कैसे जांच सकता है कि उसकी बिल्डिंग सुरक्षित है या नहीं?
0: ये दो प्रश्न आपने किए, नंबर एक NOC से संबंधित, दूसरा सुरक्षा से संबंधित।
2: जी
0: NOC का के नियम एक शब्द में या 5 मिनट के इंटरव्यू में बताना मुश्किल है
1: जी।
0: फिर भी हम आपको बता दें, जो हजार्डस बिल्डिंग है, जो मेडिकल के हॉस्पिटल है, जो होटल है, उनके लिए 500 वर्ग मीटर अथवा 9 मीटर की ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर का उसका क्षेत्रफल, इसमें NOC की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें 15 मीटर की ऊंचाई और 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, इसमें मोटा मोटा तौर पर NOC की आवश्यकता होती है। बाकी बिल्डिंग में NOC की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी अगर कोई NOC के लिए अप्लाई करता है तो उसको चेक करके अगर उसके अग्निशमन संयंत्र सभी ठीक से लगे हुए हैं तो उनको NOC जारी की जाती है। सुरक्षा के संबंध में मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी को डाउट है तो नजदीकी फायर स्टेशन में जाकर के और वो बताएं कि हमारे इसमें NOC है या नहीं है, तो वो बता देंगे NOC आपकी जारी है अथवा नहीं जारी है। उन्होंने सुनी NOC जारी कराई है, मैं वहाँ के रेजिडेंट से बताऊंगा जिन्होंने खुद जारी कराए, जो मालिक है, कि वो अपने उपकरणों को बीच बीच में जांच करवाते रहें, उपकरण उनके सही ढंग से काम करते रहें और कोई भी जो एरिया है, खास करके जो आपकी सीढ़ियां है या रिफ्यूज एरिया है, उसमें कोई चीज ना रखें, उसको हमेशा खाली रखें ताकि लोग निकल सके उसमें।
2: सर फायर सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो बचपन से ही हमारे पास होनी चाहिए, तो क्या आपका विभाग स्कूलों कॉलेजों में यंगस्टर्स को और नागरिकों को इस विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम को चला रहा है या फिर मॉडल थ्रू अवेयर कर रहा है?
0: जी बिल्कुल, हम बीच बीच में ये कार्यक्रम चलाते रहते हैं जिसमें हम स्कूलों में जा करके चेक करते हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल करते हैं और बच्चों को विशेष करके या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कई काफी लोग रहते हैं वहाँ जा करके उनकी रेजिडेंस को इकट्ठा करके और उनको फायर सेफ्टी के बारे में बताते हैं। ये रेगुलर होता है, लेकिन जितने बताने वाले लोग हैं और जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ये सब तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि स्वयं जागरूक रहें। आजकल गूगल पर हर चीज उपलब्ध है, फिर भी अगर कोई ग्रुप फायर स्टेशन से संपर्क करता है और कहता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, कोई स्कूल ऐसा करता है, तो जरूर जा करके वो लोग बताएंगे। हमारी ये ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहती है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां दी।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी बहुत शुभकामनाएं।
3: तो ये उपयोगी जानकारी हमें दे रहे थे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जो DIG है फायर सर्विसेज में। और श्रद्धा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये रही है ना?
4: जी हाँ, और हमें आशा है कि हमारे जो श्रोता है वो जरूर इसका लाभ उठाएंगे और सावधानी भी बरतेंगे।
3: बिल्कुल, घर हो या कार्यस्थल हो, इन बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो किसी भी होने वाली दुर्घटना से हम बच सकते हैं।
4: बिल्कुल।

0: बर्फी फिल्म का यह खूबसूरत सा नगमा अभी आपने सुना और अब समय है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और झांकने का इतिहास के पन्नों में।
1: बिल्कुल,
0: तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज यानी 7 जुलाई को हम कौन कौन से दिवस मनाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल रिंकी, आज दिवस भी बड़े ही महत्वपूर्ण और मीठे से हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि आज विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ये दिन चॉकलेट के इतिहास और उसकी लोकप्रियता का उत्सव है।
1: ये दिन 1550 में यूरोप में पहली बार चॉकलेट के आगमन की याद में मनाया जाता है।
0: जी हाँ, और इसके साथ ही आज वैश्विक क्षमा दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन हमें रिश्तों में कटुता छोड़कर क्षमा, अपनापन और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल, इसे मनाने का उद्देश्य है कि मानसिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार हो सके, और इस दिन का ध्येय भी यही है कि हम पुराने मतभेदों और शिकायतों को भुलाकर रिश्तों में सुधार करें और मानसिक शांति प्रदान करें अपने मन को।
0: बिल्कुल, एक और दिन आज मनाया जाता है, वो है विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। यूनेस्को द्वारा अफ्रीकी संस्कृति की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक स्वाहिली के महत्व को पहचानने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अपने श्रोताओं को आज के इतिहास के बारे में भी बता दें। आज के दिन सन 1896 में फ्रांस के ल्यूमेर ब्रदर्स ने मुंबई के वाटसन होटल में पहली बार 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था, जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी।
0: बिल्कुल, भारत में चलचित्रों का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन, क्या बात रही होगी, है ना? और आज देखिए जी, और दोस्तों 1978 की बात करें तो आज ही के दिन सोलोमन द्वीप एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इतिहास की ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।
1: और सन 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत भी हुई थी।
0: वाह श्रोताओं, ये जो इतिहास है, इसकी जो घटनाएं हैं, वो बहुत कुछ अपने अंदर समेटे रहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण यादें समेटे रहती हैं, और जब हम इन्हें सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा दिन बन जाता है। और श्रद्धा, क्यों ना एक नजर मौसम पर भी डाली जाए, क्योंकि पल पल मौसम बदल रहा है।
1: जी हाँ,
0: तो आइए जान लेते हैं कि क्या रहेगा मौसम का हाल। और मौसम का हाल बताने के लिए हर रोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी, है ना? तो उनसे सुन लिया जाए। नमस्ते सर।
2: नमस्ते,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आज सुबह में।
2: जी, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर। अब बीते दिनों हम लोगों ने देखा कि लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी वर्षा हुई, लेकिन फिर से मौसम ने रुख बदल लिया है, तो आने वाले समय में क्या रहेगा लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का हाल?
2: देखिए, मौसम की बात करें तो जैसा कि इधर एक लो प्रेशर सिस्टम गुजर रहा है, जो कि डिप्रेशन के फॉर्म में उड़ीसा और झारखंड के एरिया में, तो कहीं ना कहीं वहां से हवाओं का

0: सर आ रहा है और उमस काफी भर के आ रही है, तो बीच बीच में हल्की बारिश भी हो रही है। तो ये आज भी कुछ इसी तरीके से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, बाकी कल से धीरे धीरे ये इंटेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है धीरे धीरे यूपी की तरफ आ रहा है। तो कुल मिला के कहें तो आने वाले दिनों में थोड़ा वर्षा की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी और प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश का सिलसिला में बढ़ोतरी आएगा और धीरे धीरे जो ये गर्मी था उससे थोड़ा हल्का सा राहत मिलने की संभावना है।
1: जी, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन खुशनुमा होने वाले हैं लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के लिए।
0: जी बिल्कुल
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुबह सवेरे आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद मैम।
1: नमस्कार सर।
2: भाई देखो रिंकी, मौसम का हाल तो हमारे श्रोताओं को मिल गया है, तो बस आप तैयारी रखें क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है।
3: जी हाँ, और कैसी तैयारी की बात श्रद्धा कर रही हैं, समझ तो गए होंगे आप।
2: जी हाँ,
3: चाय और पकौड़े तैयार रखिए, लेकिन इसके साथ जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान रखिए।
2: जी हाँ, और बच्चों का और अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे ना पानी में भीगना बड़ा पसंद करते हैं।
3: जी, एक और चीज अपने श्रोताओं को बताएंगे कि बारिश के मौसम में हम अक्सर भीग जाते हैं और फिर हम गीले कपड़े ज्यादा देर तक पहने रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि फंगस की जो समस्याएं हैं, इन्फेक्शन, वो बहुत होता है। तो ध्यान रखिए कि इस तरह की कोई समस्या ना आने पाए। तो जैसे ही अगर आप बारिश में भीग रहे हैं तो जितनी जल्दी संभव हो घर पहुंचकर अपने आप को पूरी तरीके से सुखाएं। इससे सर्दी खांसी से तो आप बचेंगे ही, लेकिन जो फंगस इन्फेक्शन होते हैं वो भी आप उससे बच सकते हैं।
2: और रिंकी, इसके साथ ही जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग घर तो बहुत साफ सुथरे रखते हैं कि पानी ना जमा हो, तो रिंकी इसके साथ साथ अपने गली मोहल्लों का भी ध्यान रखें और कूड़ा करकट बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें।
3: बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई रहेगी तो ही ये मौसम अच्छा रहता है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल का गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: और इसी मीठे खूबसूरत से गीत के साथ अब कार्यक्रम आज सुबह से मुझे यानी रिंकी शर्मा
0: और श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ का सफर भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रेनफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य

0: मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ

0: बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: .4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और चलिए सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली।

नमस्ते बरेली, सुबह की 8:15 और 28 सेकंड हुए हैं और इसी के साथ आपका प्रोग्राम नमस्ते बरेली शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम नमस्ते बरेली की करते हैं शुरुआत।

उम्मीद तो भाई यही कर सकते हैं कि आपके हाथों में इस समय चाय का कप होगा और बाहर जो मौसम बारिश का बन रहा है वो बारिश तो जरूर आएगी, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ने की वजह से काफी जो बरेली का टेम्परेचर है वो काफी अब गर्मी भरा हो गया है। तो उम्मीद है कि मानसून में इस बारिश के आने की वजह से हम सभी को राहत जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं शहर की कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस खबर की। तो बड़ी गर्व की जो बात है वो ये है कि नाथ नगरी एयर टर्मिनल से ये खबर सामने आई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे लेटेस्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बरेली एयरपोर्ट ने पूरे यूपी में पहला रैंक हासिल किया है और देश के 62 एयरपोर्ट्स में बरेली सीधे 7वें नंबर पर आ गया है। तो है ना ये खुशखबरी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अब हमारे एयरपोर्ट का महाविस्तार होने जा रहा है, जिससे दिल्ली और नोएडा के लिए शुरू हुई फ्लाइट्स के साथ साथ अब एक साथ 10 बड़े एयरबस विमान यहां खड़े हो सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुविधाओं, सफाई और पैसेंजर्स की सहूलियत के मामले में लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों को भी बरेली ने पीछे छोड़ दिया है, यानी अब बरेली की उड़ान को रोकना नामुमकिन है।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। तरक्की की उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि एजुकेशन की फील्ड में भी है। जी हाँ, हमारे शहर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में देश का पहला AI और रोबोटिक्स सेंटर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और बरेली के युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स सीखने के लिए अन्य शहरों में जाने की अब जरूरत नहीं, वो यहीं पर रहकर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सकेंगे। सचमुच NAC की A+ ग्रेडिंग के बाद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने बरेली का नाम देश के जो मैप है उस पर स्वर्णिम अक्षरों में भी लिख दिया है।

बरेली शहर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो बरेली में अगर सड़कें काफ़ी अच्छी हो और ट्रैफिक ना हो तो हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते पर जो है रेहड़ी वाले आ जाते हैं और पूरी जो सड़क है वो जाम से मुक्त होने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें भी करने लगते हैं, लेकिन शहर की ओर जाम से मुक्ति दिलाना एक बड़ी समस्या बन

दी जा रही है। वैसे हमारे शहर बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण BDA और नगर निगम ने कमर कस ली है। शहर में ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए 10 नए स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिससे रेहड़ी वाले को भी खास तौर पर जगह मिलेगी और वो यहां पर अपने वेंडिंग एरिया में दुकानें भी लगा सकेंगे। अगर हम बात करें तो डेलापीर से लेकर सैटेलाइट तक की सड़कों को बढ़ाए जाने का जो काम है वो काफी स्पीड से चल रहा है और जल्द से जल्द हमें चौड़ी सड़कें मिलेंगे जिसमें हम आसानी से आ जा सकेंगे और अपने जो हमारे रास्ते हैं वो भी काफी सरल हो सकेंगे। तो हमें इंतजार है कि जल्द से जल्द जो सड़कें हैं, जो उनकी चौड़ाई है, उन्हें हमें मिल सके और इस दिशा में जो काम है वो भी तेजी से हो सके।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। तो हम बात कर रहे हैं कि शहर कैसे स्मार्ट बन सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो कूड़े की समस्या है, वो भी एक बड़ी समस्या है किसी भी शहर के लिए। अपने शहर अगर बरेली की बात करें तो कूड़े के निस्तारण के लिए सत्रापुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन की राह पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति पत्र यानी कि NOC जारी होते ही प्लांट का जो संचालन है उसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद बाकरगंज में लगे कूड़े के ढेर को तेजी से हटाया जा सकेगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगी।

जैसे कि प्लांट से हर दिन 500 टन कूड़े को साइंटिफिक तरीके से निस्तारित किया जा सकेगा। प्लांट पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा और बिजली की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तो है ना, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमारे शहर के लिए।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। सुबह के 8:33 और 17 सेकंड हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं बरेली की कुछ खास खबरों की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरेली जंक्शन पर डबल ब्लॉक की वजह से पैसेंजर्स की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पुरानी वॉशिंग लाइन की रिपेयरिंग की वजह से बरेली दिल्ली पैसेंजर निरस्त रही और बरेली मुरादाबाद रेलखंड पर काम की वजह से अवध आसाम एक्सप्रेस बरेली जंक्शन पर नहीं आई। तो इस तरीके से ट्रेन जंक्शन पर कई घंटों की देरी से पहुंची और यात्री काफी परेशान हुए। तो दूसरी ओर ये खबर गुड न्यूज है कि टनकपुर से नादेड़ के लिए साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत हो गई। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में बरेली के यात्री बरेली और इज्जतनगर जंक्शन से यात्रा कर सकेंगे। वहीं टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर का शाहजहांपुर तक विस्तार भी हो गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 12 जुलाई से

17631 नादेड़ टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस हर रविवार को नादेड़ से 11:40 से चलकर दूसरे दिन ललितपुर 4:41 झांसी से 6:05 से ग्वालियर से 7:12 पर और बदायूं से 1:32 पर बरेली जंक्शन से 2:30 इज्जतनगर से 3:02 और फिर टनकपुर 5:55 पर पहुंचेगी। तो दूसरी ओर ये भी खबर है कि बरेली से दिल्ली नोएडा की फ्लाइट अब फुल होने लगी है। बरेली से नोएडा की फ्लाइट में 51 यात्री गए, वहीं दिल्ली की फ्लाइट में सोमवार दोपहर तक 63 और आने की 74 सीटें बुक हो चुकी थीं। फिलहाल दिल्ली से जो बरेली का किराया है वो 8,600 तक पहुंच चुका है। तो बरेली से भी ये फ्लाइट के जो टिकट हैं वो फिलहाल अब महंगे हो गए हैं।

हाँ कि हाँ, फिलहाल देखना होगा कि बारिश आज होती है या नहीं। जिस तरीके से 2 जुलाई को भी बारिश होने की पूरी पूरी संभावना थी, फिलहाल आज जो हमारी ये सोच है, पॉसिबिलिटी है, वो फिलहाल बनी है कि आज शहर में बारिश हो। दूसरी ओर बात करें कि मॉनसून के सक्रिय होने के बाद मौसम काफी बदल रहा है। एक और रविवार की रात झमाझम बारिश ने और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि जो सोमवार का दिन रहा वो काफी उमस भरा रहा और गर्मी के नाम रहा।

दूसरी ओर दोपहर होते होते कल जहां चटक धूप भी खिली, शहरवासियों को दिनभर उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना भी है।

और अगर हम मौसम की बात करें, मौसम के मिजाज की बात करें, तो खिड़की से बाहर ठंडी हवाएं घर के अंदर आने दीजिए, क्योंकि 7 जुलाई का आज जो दिन है, बादलों ने पूरे शहर को ढक रखा है। मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और शहर के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो चलिए, हमारी जो उम्मीद है वो रंग लाइए और बारिश का जो माहौल है पूरी तरह से बन चुका है काफी उमस के बाद। बरेली में भी जो मोस्ट टेम्परेचर में है वो गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए, अब प्रोग्राम में हम सुनते हैं ये गाना और एंजॉय करते हैं बारिश का, तो आप भी बारिश का आनंद लीजिए।

बरेली शहर की बात करें अगर खेल की, तो कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए अब राज्य और जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविर में छात्राओं को खेलों का प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। तो है ना ये अच्छी खबर। दूसरी ओर आपको बता दें कि दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली ने हाई स्कूल 2026 की ऑनलाइन स्क्रूटनी का परिणाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही आवेदनों की नियमानुसार जांच भी पूरी कर ली गई है और जल्दी इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली, आकाशवाणी बरेली से। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। चलिए सुनते हैं लोकगीत।

तो जिस तरीके से बारिश का मौसम बना है उसे आप एंजॉय करिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली। सुहाने मौसम में घोलते हैं सुरों की मिठास और इसी तरह आप आकाशवाणी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से इस वक्त कार्यक्रम चित्र लोक, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं क्या दिल ने कहा इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संजय छैल की शब्द रचना और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।
1: No!

नेता दिलीप कुमार पर प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। और रात को 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन, सुनना नहीं भूलिएगा। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, ये है जलवा फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, सुधाकर शर्मा के बोल, संगीत एक बार फिर हिमेश रेशमिया का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। रहना है तेरे दिल में इस फिल्म का गीत सुनिए। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में समीर की रचना, हरीश जयराज का संगीत। मुझे क्या है?

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में फिल्म से। इस गीत के संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, हैरिस जयराज ने इस गीत की धुन बनाई थी। अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। समीर के ही बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति फिल्म अंदाज से बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण की बनाई तर्ज़।

श्रोताओं, आज है अभिनेता दिलीप कुमार की पुण्यतिथि। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अदाकारी, सादगी और अमर किरदार सदैव भारतीय सिनेमा के इतिहास को रोशन करते रहेंगे। उन्हें हमारा विनम्र नमन। और अब से कुछ ही देर में आज आप कार्यक्रम सुनेंगे आज की फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर। अभी आप गीत सुन रहे थे चित्रलोक में अंदाज फिल्म का, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पेश है अदाकारे आजम दिलीप कुमार।
1: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है।
0: दिलीप कुमार को अदाकारे आजम यूं ही नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे आज के फनकार कार्यक्रम में हम बताएंगे दिलीप कुमार साहब कहां पैदा हुए, किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उन्होंने अपनी शैली बनाई और किस तरह से अपना फिल्मी सफर आगे तय किया। लेकिन नहीं जनाब, ये सब आप जानते हैं और हमें पता है कि आप ये सब बार बार नहीं सुनना चाहते। आज के फनकार कार्यक्रम में आज होंगे दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल नायाब संवाद। कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम गाने इस कार्यक्रम में शामिल करें, यानी इस कार्यक्रम को अदाकारे आजम दिलीप कुमार के संवादों से सजाया गया है। तो सबसे पहले मुगले आजम।
2: महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
1: नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी।
2: हर किस नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुर जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने।
1: तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
0: दिलीप कुमार ने संवादों की अपनी अदायगी की शैली धीरे धीरे विकसित की है। सन 1950 की तरफ लौटते हैं, एसयू सनी की फिल्म आई बाबुल, जिसके सितारे थे दिलीप कुमार, नरगिस, मुनव्वर सुल्तान वगैरह। सुनिए उस जमाने में दिलीप कुमार कैसे बोला करते थे।
3: अशोक बाबू, माफी मांगने आई हूँ।
4: आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया?
3: इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
4: आग लगा सकती हूँ, वजह नहीं बता सकती।
3: मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, पिताजी ने मेरी शादी कर सकती है। इससे पहले कि आपके और मेरे दरमियान कभी नाचने वाली दीवार खड़ी हो जाए, चलिए कहीं भाग चले।
4: ये आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप चलिए।
0: सन 1950 में दिलीप कुमार फिल्म बाबुल में किस तरह अप...

ने संवादों की अदायगी करते थे, ये हमने आपको सुनवाया। आइए अब 36 साल आगे चलते हैं और सुनते हैं सुभाष घई की फिल्म कर्मा का ये सीन।

ये सब सुनकर कहने का मन करता है, दिलीप साहब वी रियली लव यू। इस गाने को सुनवाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे दिलीप कुमार ने सबसे पहले आखिर किस फिल्म में गाया था, किसके संगीत निर्देशन में गाया था और कौन सा गाना गाया था। दिलचस्प बात यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1957 में निर्देशन की अपनी यात्रा शुरू की दिलीप कुमार के संग। ये फिल्म थी मुसाफिर। संगीतकार थे सलील चौधरी और इसी फिल्म के लिए दिलीप कुमार ने सबसे पहले एक गाना गाया। ये गाना गाया था उन्होंने लता मंगेशकर के साथ। सुनिए ये दुर्लभ गाना।

0: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
1: और मत पिया देवदास।
2: क्यों?
1: कुछ ही दिन हुए पीने।

0: करता।
1: बरसों बरस तक दिलीप कुमार की पहचान रही वो भूमिकाएं जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग बनाया। दिलीप कुमार उदासी के शहंशाह थे और उन दिनों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं थे। आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों के संवाद सुने जाएं और इन फिल्मों की सरताज देवदास।
2: और मत पियो देवदास।
3: क्यों?
2: कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूं।
3: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो तभी होश ना आने पाए।
2: यहां ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं।
3: छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा।
1: बात दिलीप कुमार के ऐसे रोल्स की हो रही है जो उदास भूमिकाएं कही जा सकती हैं। सुनिए फिल्म दिल दिया दर्द लिया का ये संवाद। आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये फिल्म एमिली ब्रोंटे के मशहूर नॉवेल वुदरिंग हाइट्स पर बनी थी और इसके निर्देशक थे अब्दुल रशीद कारदार, साल 1966।
4: ये औरत की मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा है भगवान? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हुआ है, जिसने प्यार को अपना धर्म समझा, जिसने दुख और तकलीफों को अपनी परीक्षा की अंगार समझकर अपना सब कुछ चुरा लिया? मैं हूं वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह दिन रात इन खंडरों में भटकती है, वो इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता, और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख की नींद सोते हैं, ये सुख की नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों में आकर अपनी पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को अपनी शरण में जगह दोगे? क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा, उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए, फिर ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है? ये कौन है? मैं पूछता हूं, ये कौन है जो इस धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है? धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए, धरती के उस कोने में जहां वैशी दरिंदे बसते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर प्यार और शराफत के नाम का मातम करती है, इसको कह दो कि वहां चली जाए।
2: शंकर मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के कहती हूँ बस करो शंकर।
4: हरगिज नहीं, तुम्हें इस दुनिया से वही मिलेगा रूपा जो तुमने इस दुनिया को दिया है। तुम इसी तरह रोगी, इसी तरह तड़पोगी, रात की तन्हाइयों में अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहां से।
1: साल 1951, फिल्म दीदार का ये संवाद सुनिए। बात दिलीप कुमार के ट्रेजेडी रोलों की हो रही है।
5: गाना खत्म हो गया सरकार।
2: ओ, गाना खत्म हो गया? बड़ा दर्द है तुम्हारे गाने में कविराज।
5: दर्द का दूसरा नाम गाना है सरकार। मैं गाने की शक्ल में अपना दर्द ही गाया करता हूँ।
6: चंपा, चंपा बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो 80 रुपया दे कर तड़का दिया करता, उसने 2 रुपया दिए भैया को।
5: अरे बल्लम, मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी।
6: आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना, ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल, 10 नहीं 2 कहे थे 2।
1: लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने ट्रेजेडी किंग के अपने छापे को निकाल फेंका और एक के बाद एक कई कॉमेडी भूमिकाएं की। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि अब हम कोई कॉमेडी संवाद सुनाने जा रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। अभी जरा दिलीप कुमार का ये रोमांटिक संवाद सुनिए, जरा सुनिए।

0: दिलीप कुमार मीना कुमारी से अपनी अदाओं के जरिए कितनी रूमानी बातें कह रहे हैं।
1: कब आए?
2: सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए।
1: हाँ, इतना बड़ा झूठ।
2: इनसे पूछ लो, ये मेरे गवाह हैं। तुम्हारे बिना एक एक पल सौ सौ साल का लगता है। तुमने अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं ना, यही तो मुश्किल है। भगवान ने कितनी अच्छी तरह तुमको सजाकर इस दुनिया में भेजा है। आंखें एक जैसे झील में खिले हुए दो केवल देखती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष खिल उठते हैं, और शर्माती हैं तो कलियों का सर झुक जाता है। रूपा, तुम्हारे इन जुल्फों की छाव के सिवा मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। रूपा,
1: ऐसी बातें करोगे तो मैं ऐसे भाग जाऊंगी। शंकर,
2: तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए सौ सौ साल का हो जाएगा।
1: शंकर,
2: रूपा।
0: दिलीप कुमार की खासियत है अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूब जाना और संवादों की ऐसी अदायगी कि लोग अश अश कर उठें।
3: मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था। बानी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया।
2: मेरा भाई मर गया।
3: अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे। अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर बानी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं है। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले।
2: मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं। ये सब के सब मेरी तरह मुजरिम है। ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं।
0: अब जरा दिलीप कुमार की कुछ कॉमेडी भूमिकाओं के अंश भी सुनवा लिए जाएं। गोपी फिल्म का ये संवाद।
4: सुपरटेंडेंट।
5: अरे क्या बकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4।
5: अरे 1 2 3 4। मैं कैसे हूँ?
4: अरे 1 2 3 4। 1 2 3 4।
5: तुमने थप्पड़ रखे।
4: एंटी फैन सेंटीमेंट।
5: क्या?
4: एंटी फैन सेंटीमेंट।
5: अरे हार्ट सेंटीमेंट।
4: अरे
5: अंग्रेजी बोलने वाला।
0: और ये संवाद फिल्म राम और श्याम से।
6: सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने। बमन जी, कागजात पर साइन करवा लीजिए।
6: हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेट लेटिव चो।
7: तो जल्दी साइन कर दो।
8: देख लो और देख लो पर जल्दी। हाँ
7: तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे?
9: आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे

0: गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा, इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? क्यों सर?
1: पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते हो सिग्नेचर करके आए?
2: कौन लोग बटाटा था?
1: अरे यही लोग बटाटा था।
2: क्या बटाटा था?
1: कि तुम आते और साइन करते है कागज पर।
2: हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब।
1: तो साइन नहीं करने का?
2: आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
1: तो बच्चे बता तेरे खेल ले जाओ,
2: तुम्हें भी खेल ले जाओ।
1: होता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू।
3: अपने करियर में दिलीप कुमार का सामना कई नामी और दिग्गज कलाकारों से हुआ, लेकिन दिलीप कुमार उनके सामने हमेशा सशक्त नजर आए। फिल्म मुगले आजम, सामना पृथ्वीराज कपूर से।
4: तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो,
5: ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें।
4: यकीनन।
6: तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो क्षमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है।
4: यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है।
6: और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता।
4: तो फिर नस्ले तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त व ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे।
6: मुझे ये मंजूर है लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूँ, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो मुझे मंजूर नहीं।
4: मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की बाजेब बनाना चाहते हो, तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और तुम
6: और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
4: खामोश।
6: अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
4: इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी।
6: एक तंग दिल शहनशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है, जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहनशाह अकबर की मौत पहले होगी।
3: शक्ति, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने।
7: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
8: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
7: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
8: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
7: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
8: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
7: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
8: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
7: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
3: सुभाष कही की फिल्म सौदागर में एक बार फिर हुआ राजकुमार और दिलीप कुमार का आमना सामना। आपको बता दें, इससे पहले दिलीप कुमार और राजकुमार सन 1959 में फिल्म पैगाम में आमने सामने आ चुके थे। फिल्म सौदागर।
9: हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह?
10: और तुमने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई? वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड।
9: वो तो था और है और हमेशा रहेगा।
10: वो रहे न रहे पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग।
9: राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह।
10: समझ गया।

0: आ तो दिखा अपनी उड़ान अब, जे खड़ा तू और जे खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर, निकाल ले तो अपने दिल के अरमान, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ।
1: हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
0: बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का है शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
2: सन 1984 में यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में दिलीप कुमार ने एक ऐसा सीन किया जिसे सुने या देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आंखें नम न हो जाएं।
3: सुधा, सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा।
4: ए भाई, ए, ए, ए भाई, ओ भाई साहब, गाड़ियों का भाई, गाड़ियों का, बताओ जरा भाई, अरे सब, ये सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अब मताल पहुंचा दो भाई साहब।
3: सुधा, थोड़ी देर हिम्मत कर जा, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, अरे जो जो क्या हो रहा भाई, अरे पूरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे, अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है, बुरी हालत है भाई, चलो। ओ भाई साहब, अरे कोई है, अरे कोई आओ, अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे, गाड़ी रोको। ए भाई साहब गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको उसको अस्पताल पहुंचाना है भाई साहब, वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मेहनत कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, भाई साहब आपके बच्चे जिए, भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब।
2: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने अदाकारे आजम दिलीप कुमार के अभिनय की यात्रा से आपको रूबरू करवाया। आज का ये कार्यक्रम दिलीप कुमार के कुछ बेमिसाल संवादों से सजाया गया था। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया होगा। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।
5: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में।
3: सौदशमलव 4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

और सुबह के 10 बज चुके हैं। तो चलिए आज का प्रोग्राम आपकी पसंद शुरू करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम सुनाएंगे आपकी पसंद के गाने। ये है गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णम सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, जिला अंबाला कस्बा बराड़ा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। ये हैं कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शको, नारुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से है, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी। साथी निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू, लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और पोपलघट, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम, अजीम, अदीम और अब्दुल, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंग्या, नमन और अपार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवायान, शेरकोट जिला बिजनौर से हैं। राजस्थान के ज्योतिनगर नोखा से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं और गढ़ी कोटहा जिला पंचकुला हरियाणा से सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद, अक्सा, आयशा, उमर और समीर। चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से हैं मुकेश, गौतम, सुनील, अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू। ये हैं एमपी आलोर जिला रतलाम, मालवा रेडियो श्रोता संघ से जगदीश ठाकर, रंजू, युवराज और शिवांगी, बीजना मुरादाबाद से राजवीर, कुणाल, मनीष, यूनुस, सोफिया। साथ ही गांव लोहडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर, भुवनेश्वरी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ और सुमन देवी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजवी अंसारी, नुसरत फातिमा अब्रार, अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। गांव फारा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उल्ला अंसारी, आसमा नाज, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज। साथ ही ये हैं दहीगांव नादुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला, विवेक, भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान, संत नगरी, शुगांव से शुभम और रुद्र राउत, सब्जी मंडी बरेली से हैं रजा इकबाल सुल्तान, रजा जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक और इनका पूरा परिवार, राजपाल पंकज, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर, सोनू, सुरेश, मुकेश कश्यप और शीतल, जिला मुरादाबाद, दुलापुर उत्तर प्रदेश से। ग्राम पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्णा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। और अब सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना। फिल्म का नाम है कला और जिसमें आवाज दी है श्रीशा भागवतुला ने। तो सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना फिल्म कला से, और इसमें आवाज शिरीषा भागवतुला की। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद।

और अब आप सुनेंगे अगला गाना, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप सभी श्रोता कहां से इस गाने को सुनना चाहते हैं। विनेश कुमार श्रीवास्तव रागिनी और मुस्कान बैंक सेंटर चनेहटी के पास बरेली कैंट से हैं। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहिरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान अंसारी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, और ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा। सादुलशहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक। मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। बहेड़ी से अंजुम भाई और खालदा बेगम। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव। ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद शकील, मुईन तस्लीम और डीजे प्रधान। मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से मोहम्मद हसन अंसारी और अजहरुद्दीन। एयरपोर्ट नगर रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी, संजना कार्तिक, गणेश रक्षित, निखिल और इनका पूरा परिवार। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या। बिताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, जोई और

गुड़िया खातून, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी दीपाली, युवन और आर के राजा, ये है रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके पूरा परिवार, गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगन दीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अनिल कुमार मालवे और सरिता, तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम अरहम और किशबा नूर, राजकुमार बिट्टू, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी, नंदिनी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, अनूप गढ़ राजस्थान, चकपांच एमडी पत्रोड़ा से है, मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील जनांगल, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला नवारकर, विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहरकर, ये हैं ग्राम लसूडिया तहसील गढ़ नरसिंहगढ़ से हैं, जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, गांव धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, विलेज काष्टा ओल्ड अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्याली और पार्थ के अलावा इनका पूरा परिवार, पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुग अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, भाविक ढिंगरा और ये है पटियाले रोड गंज डुंडवारा यूपी से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और अरीबा हबीबा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, सलार पहलगाम फ्रॉम कश्मीर से हैं पैरजादा मिराज और इनका पूरा परिवार, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन अंसारी, कवाई सालपुर जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, ये है परिमहल कासगंज यूपी से आबा खान, नाबिल खान, शमसुल कमर, असलम, शैफी और इनका पूरा परिवार, साथ ही ये हैं हमारे श्रोता जो कि गंगानगर से नेकी राम बंसीवाल, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना बागी फिल्म से जिसमें आवाज़ है मोनाली ठाकुर की।

और अब आप सुनेंगे धुरंधर फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय और किट्टू इनके परिवार के सभी सदस्य, चनौरा जिला फिरोजाबाद यूपी से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा और इनका पूरा परिवार, आदेश नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरभ और शाइना, नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल सिया जालना शहर से, सोमनाथ यादव, गीता, ओम यादव, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक, ग्राम शेट्टी जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश और वसुंधरा, गांव खोखरावाली श्रीगंगानगर से विनोद बरासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन, जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका, मामुलवाडी महाराष्ट्र से सुपान ताइडे, वसंतराव, पीएस नवारकर, गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, लोखंडे कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से हैं। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत और मिथिल नाचानी, ख्याल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानकचल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक सिक्का, जलेश्वर नायक, गौरव नायक इनका पूरा परिवार, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक और मंजू नायक भी यहीं से हैं, एडवोकेट वारिस अली, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान, बेबी नुसरा खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मातुर राव पांचाल और ये हैं लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, निशान जगताप, मानसी हरिबाबू बिडवाई और बंधु के अलावा पोपल घाट से हैं ये, और साथ ही समता नगर से भी हमारे ये श्रोता, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, श्याम कुंवर, अनुश्री, श्याम कुंवर और ये हैं शनि बाजार कस्बा उगैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, परियाल, कायरव गुप्ता, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, अनवर अंसारी, रवीना, आफिया और अंसारी, सुराज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, हिना, राजिया, सुल्ताना अंसारी और इनका पूरा परिवार अहमदगढ़ मंडी पंजाब से है, और ये हैं माधुर नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर एमपी से, अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति

अटल, ऋतु, गुड़िया, वेदा, धनवंतरी नगर, जबलपुर, एमपी से। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफो की बाबरी से खुदा बख्श खलीफा, शुगर फैक्ट्री गेवरई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, रंजीत एकनाथ और इनका पूरा परिवार, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्ना हर्ष, दीपल और उर्वशी, ग्राम चांदुर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल, ग्राम राजौर तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बौलागढ़, नई बस्ती, भोजपुरा, बरेली से तरनुम अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद, हसन अंसारी, तराना अंसारी और इनका पूरा परिवार, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, आर्जन कुमार, वंदना सिंह, विंती, विनायक, मोहिनी, मोहित और कोको रानी, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, साथ ही ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता, मां बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा, मिलिन, प्रणय, रुद्रांश और इनका पूरा परिवार, जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता रसीवन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन साहू, चंद्रेश गौहर, वंदना मयंक, तन्वी अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर एमपी से, जयपाल यादव भी यहीं से हैं, उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से, बालू अप्पा घटबोले और ज्योति घटबोले, गुरमीत सिंह मेहता साउथ दिल्ली से। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना धुरंधर फिल्म से अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में।

और अब आप सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम है बदलापुर, और इस गाने को गाया है आतिफ असलम ने। तो आपको बता दें कि ये गाना हमारे सभी श्रोता कहाँ से और कौन कौन सुनना चाहता है। कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सोनू, कमल और मोहम्मद अफजल मलिक, ये हैं गाड़ी खाना। चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू, नितिन, सावन, सचिन और शक्ति। साथ ही ये हैं मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी करगैना बरेली यूपी से बेनिंग सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शकुन,

चारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। कांटे रोड वाशिम महाराष्ट्र से बिट्ठल सुरोशो, सुषमा परिधि और मायरा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा, मोहम्मद आसिफ अंसारी। ये है शादनगर और तेलंगाना हैदराबाद से हैं। ये है शास्त्री नगर बीट शहर से किसन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल। रोपड़ पंजाब गांधी चौक से है हरदेव मीका, बलविंदर जयतेक, मीका विरक। मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधु सतना। एमपी से उमंग और सागर बालूजा, आकांक्षा, माही मलिक। सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फाहिरा और ताहिरा। भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़। कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा मित हैप्पी। दुविहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन। शिव मंदिर हरकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, स्मरणकार पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पेहू। ये हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरू, निशा शबिस्ता, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम बदलापुर, आतिफ असलम की आवाज में।

और ये हमारे श्रोता शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला विशाल, चेतन रोशनी मनवर और प्रियांशी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार, और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथलेश वर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल, लखवीर, रानू कृष्णा, छंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशांत अनमोल, चटकू और मटकू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अनारकली बजाओ जगराओ से सुनील पाठक, कमल दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और साथ ही ये हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूरत, नेहा दीपक, मयंक मूरत, चेतन, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश तंगई, महेश तंगई, प्रग्रेश और इनका पूरा परिवार, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरुण। बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे, हनुमंत प्रथमेश और इनका पूरा परिवार, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, मुकेश और इनका पूरा परिवार, मछली गोदाम क्यादी मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम, उषा और ऋषभ, मारहरट्टा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, रसीद, अनम और यशव, मानसी, गौरव, अनिल, कविता अरोड़ा मोतीनगर नई दिल्ली से हैं। ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अवंतिका, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से हैं, आकोट से विनायक बिंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन, संजीव, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन, फातमा, वकार, हैदर, करी, सकीना, हसीना, दिलशाद, वसीम, फातमा, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक, नामदेव और हर्षित, मुंगी पैटर्न महाराष्ट्र से बाबा साहब कंगड़कर, परमेश्वरी, श्राविनी, ईश्वरी और इनका पूरा परिवार, छिंदवाड़ा एमपी से हैं सतीश रघुवंशी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू, मोहित और तान्या, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, साई की शिरडी से सुरेश मालोदे, वर्षा, श्रद्धा और मानसी, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप, ये हैं जींद्र हरियाणा से, गांव डाकघर निमनाबाद से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और सोनम अदीबा, ग्राम एचौरा तहसील मिलक जिला रामपुर से आकाश, अरशान, मोहम्मद, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद फैज और शोभी श्रीवास्तव, विष्णु कोरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खरवाल, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जिवियम और ये है सरथना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भवि जैन, गांव जाखो से शंभु दयाल खटक, विमला, मजवी, सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से टेकराम विकास, हेमलता, गीतेश्वरी, यदु और आप सभी की पसंद का ये गाना है, फिल्म का नाम है मैरी कॉम, आवाज है अरिजीत सिंह की।

और अब आप सुनेंगे ये गाना श्रेया घोषाल और अजय की आवाज में, फिल्म का नाम धड़क। गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से टेकराम यदु, विकास हेमलता और गीतेश्वरी, जैज राम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु होली चौक उत्तमनगर दिल्ली से हैं, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, योगेंद्र, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित, वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता, पंकज, पीहू और दया चौरसिया। चौकड़ाधाम कॉलोनी सनावद खरगोन एमपी से कृष्णपाल सिंह, तारा देवी, नव उदित, वैभवपाल ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान, सिहोरा जिला बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना अरफात, अदीब और कादिर चौधरी गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब, ग्राम पंजौनी जिला जालौन से सतेंद्र कुमार, आदर्श अलौकिक और सार्थक, ये हैं गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी पुष्पा गौरव, चंद्र प्रकाश सरहाली, सोपनाहा नेपाल से हैं अरुण कुमार, रेणु देवी, राहुल वंदना, प्रियंका कुमारी और इनका पूरा परिवार, ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, तौफीक लहीक मंसूरी, राहुल रस्तोगी और इनका पूरा परिवार, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, ये हैं महकप्रीत कौर और सेजरप्रीत सिंह गाँव तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से, साथ ही ये हैं सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, आरुष, शौर्य, दिनेश, महेश्वरी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्टो, रोजी पल और विलिस डिकिस्टो, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, फुले नगर बीड़ महाराष्ट्र से हैं बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि आकाश और आकांक्षा कारवा, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि, पुष्प

0: उपेंद्र और नोखे लाल हैं। विराटनगर नेपाल से है अरुण कुमार चंद्र शर्मा, रेणुका और इनका पूरा परिवार। नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई हिब्जा, नथू चाचा, हिना, जाहिर अंसारी और नन्हे ये हैं। कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, ट्रेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जाफर सदीक, शेख शंकर, गुल शर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आसाम से हैं हितेंद्र दास और मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, साहिबा जफ्फार, फरीदा बानो, अशरफ, रईसा खातून, गुजरात गांधीनगर से प्रवीण सोनी और जगदीश, डॉक्टर आरवी सिंह, अर्जुन यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा थाने के सामने अलागंज जनपद शाहजहांपुर से हैं। और ये हैं कवर कॉलोनी बड़वा खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना, राहुल पाल, हरिमोहन, अंजना, लक्ष्य, बघेल, ज्योति इनका पूरा परिवार ग्राम गोपी खीरिया तहसील भांडेर जिला दतिया एमपी से हैं। ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से राम शरण शर्मा और साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं दयानंद भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मस्कीन, ऋतिका, वाणी आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता आरोही और प्रियांशी, नंदा बोट के, शाजी बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाडे हिंगोली महाराष्ट्र से, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और किशु रिधान, मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर मोहम्मद, साकिब अलमास, बानो मोइन, छोटू शंकरलाल, वनीता, मोहम्मद हसनैन पवार ताजमंदिर लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं। राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धनवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू जरी कारीगर, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल, संजीव गंगवार कस्बा क्योलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। झारखंड जिला धनबाद से हैं ये हमारे श्रोता रामचंद्र गुप्ता, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, मीना लाम से तेजा जय, हर्षिता मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से नाना जी लाम से और इनका पूरा परिवार, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य लदावली मुरादाबाद से, राजमाता नगर बुल्डाना महाराज से हैं। महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश, साथ ही जनकपुरी नई दिल्ली से प्रदीप सलूजा और इनका पूरा परिवार, रामगंज खंडवा एमपी से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु और इनका पूरा परिवार, जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मुसा, भाईजान, राजकुमार बुड़ानमा, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश चपता। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है धड़क जिसमें आवाज है श्रेया घोषाल और अजय की।
1: अच्छा मैं रख रही हूँ।

0: तू भी बोल।
1: मनी शर्म आवे।
0: शर्म आवे? ये लपड़ दूंगी तुझे।
1: I love you.
0: के?
1: I love you too.

इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। 10:53 और 5 सेकंड हुए हैं। ज्यादा समय नहीं है और आप सबके नामों को भी शामिल करना है, तो चलिए देरी न करते हुए आप सभी के नामों को शामिल करते हैं और सुनाते हैं आपको ये गाना। और ये गाना है केके की आवाज में, फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन शहबाज, सैफ खान, ईशान आजम और अरहान। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गंज डिडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान और फैजान। शेख गांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष काले, तेजस और लोकेश। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू ज्योति, चारौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव और एस के पप्पी। साथी रघुनाथपुरा से सतीश शर्मा, रोशनी भावना गरिमा और हिमांशी। गांव टोडरपुर भूर बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से पीएस यादव, अजयपाल, पवन, प्रभात, मयंक, मुन्नी देवी, प्रतिभा और इनका पूरा परिवार। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजमा नदीम इदरीसी, असद बाबू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलाब बालौत से हैं विक्रम मालवी, रचना कमलाबाई, वनदेवी, आकाश, विनायक और इनका पूरा परिवार। नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई, हिब्जा, नतू चाचा, ननीर और इनका पूरा परिवार। सरोता से हैं गौरव मदनान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पीतमपुरा नई दिल्ली से रानी गौड़ उमेश गौड़, बुलंदशहर से उमेश गौड़ रानी गौड़ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। रिहाना खान हाफिजपुर ये हैं, रहमान खान बक्कर पंजाब से और इनका पूरा परिवार। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से नंदिनी बबीता रघुवंशी, शोभा पूजा रघुवंशी, आराध्य देविका, स्वाति प्रज्ञा और चंडीगढ़ से सतीश और विमला नेजा हमारे ये

होता है जावेद इनायत यूसुफ, ये हैं इंग्लैंड से जो इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव फुले नगर बीड़ महाराष्ट्र से, बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि आकाश और इनका पूरा परिवार गौरव मदनान है इस गाने को सुनना चाहते हैं। पीतमपुरा नई दिल्ली से रानी गौड़, उमेश गौड़ और मोहम्मद हाफिज उर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान जो कि हैं जिला भक्कार पंजाब से इस गाने को सुनना चाहते हैं। बुंदेल शहर से हैं, बुलंदशहर से उमेश गौड़ रानी और इनका पूरा परिवार, साथ ही मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुड़ामा, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप, खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, राजनारायण सोनी बेवर राजस्थान से, नगर मुल्तान नगर न्यू दिल्ली से हैं, सुरेंद्र खुराना कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुरानेश्वर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू आरोही, स्वाति। और आप सुनेंगे आप सभी की पसंद का गाना के आवाज में, फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

और साथ ही ये गाना आपको बता दें कि हमारे श्रोता मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, अमेंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी, फेज तीन अंबिका बिहार, वीर सावरकर जिला बरेली से, मनोज विष्ट, अवनी अभय आरोही, दादी आरती विस्ट और इनका पूरा परिवार, एलआईसी ऑफिस मीरगंज बरेली से, गौरव गंगवार, अरविंद सौरभ पटेल, अभिषेक सुधीर और वक्तावर हुसैन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर डीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी बरेली से सबरंग।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की आवाज़ में आपने ये गाना सुना, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम सबरंग। और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 8 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 7 जुलाई आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में गंगाशील अस्पताल बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा उपस्थित रहेंगी। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार 7 जुलाई 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर 2517200। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है कार्यक्रम झुमका गिरारे का, तो चलिए सुनते हैं। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। भाई, बरेली के बाजार में झुमका मिले ना मिले, लेकिन जुलाई की इस शुरुआती मानसूनी फुहारों के बीच बरेली की धरती पर पौधों की बहार तो जरूर आ गई है। जी हाँ, 1 से 7 जुलाई तक पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जुलाई के इस उमस भरे मौसम में अगर राहत चाहिए तो हमें अपने शहर को हरा भरा

बनाना ही होगा। इसलिए वन विभाग बरेली के बेहद खास मेहमान से हम बातचीत करेंगे। इसके लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM।

0: बरेली के सीबीगंज इलाके में जहां पर वन महोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं कि यहां पर अलग अलग वैरायटी के जो पौधे हैं वो किस तरीके के हैं। जी आपका नाम?
1: मेरा नाम संजीव सक्सेना है।
0: जी संजीव जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मौजूद है पेड़ पौधों की, तो इसका मकसद क्या है यहाँ पर?
1: यहाँ पर काश्तकार के पसंद का, जो काश्तकार को पसंद है उस तरह के पेड़ दिए जाते हैं निःशुल्क, और जो कि काश्तकार अपने मन से लगाए और वो सरसक हो।
0: जी
1: और इसमें जो है हमारे जामुन है, आम है, अनार है, नींबू है, बेल है, बहुत सी प्रजाति के पेड़ हैं जो कि लगाए जाते हैं। धार्मिक स्थानों पर भी बेल जैसे लगाए जाते हैं, और भी चीज़ें लगाई जाती हैं धार्मिक स्थानों पर, पार्क में, स्कूल में, इस तरह के सब अलग अलग तरह के पौधे दिए जाते हैं, वो काश्तकार लोग लगाते हैं जिससे हरियाली हमारी बढ़ सके।
0: जी तो लोगों को किस तरीके से सूचित किया जाता है कि आप यहाँ पर आकर निःशुल्क पौधे ले सकते?
1: ब्लॉक स्तर से इंडियन जारी होते हैं जो कि पंचायत में जाते हैं, पंचायत से प्रधान और रोजगार सेवक लेके आते हैं, उनके लिए पौधे लेके जाते हैं, वो पौधे जो है गाँव में बांटे जाते हैं।
0: जी हम जानना चाहेंगे क्या हर साल जुलाई माह में इस सप्ताह का आयोजन होता है या वैसे भी पौधे कोई भी ले सकते हैं?
1: नहीं, हर साल होता है ये जुलाई के समय में, जो वृक्षारोपण समय है इसमें पौध लगाई जाती है और निःशुल्क पौध दी जाती है।
0: बिल्कुल, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
1: लोगों से ये अपील करना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें योगदान दें, मोदी जी का और योगी जी का सहयोग करें।
0: एक पेड़ माँ के नाम,
1: एक पेड़ माँ के नाम। जी जी
0: शुक्रिया। आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। तो जुलाई के इस उमस भरे मौसम में अगर राहत चाहिए तो और हमें अपने शहर को हरा भरा बनाना होगा, इसलिए वन विभाग बरेली के खास मेहमान से बातचीत करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है झुमका गिरारे में, आपका नाम?
2: जीपी अमरेश।
0: जी तो खास तौर पर अभी जुलाई के माह में जो खास कार्यक्रम और सप्ताह चलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए।
2: हाँ, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारे वन विभाग में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है हमारे यहाँ, और इस दौरान हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो पौध हमारे यहाँ से ले जाएं और उसको लगाए जाके, जिससे पर्यावरण को हम अच्छी तरह सुरक्षित रख सकें और उसको बचा सकें। और इस दौरान हम जगह जगह पौध भंडारा करते हैं जिसमें हम लोगों को निःशुल्क पौध वितरित करते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा अलकनाथ मंदिर पर अभी 2 दिन पहले किया गया है, उससे पहले त्रिवटीनाथ

0: मंदिर पर किया गया और आने वाले समय में भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो मेरे लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप प्राप्त करके और पौधारोपण करें और हमारे पर्यावरण को आप बचाएं।
1: जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। जी हाँ, जुलाई का माह जब भी आता है तो चारों तरफ हम सभी को हरियाली दिखाई देने लगती है और मानसून के बाद तो जो स्थिति है वातावरण की वो काफ़ी सुहानी हो जाती है और सावन के माह का तो क्या ही कहना। लेकिन इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर चारों ओर हरियाली है और नर्सरी में जो पेड़ पौधे हैं वो इसे भी काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे सीबीगंज के इलाके को। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पौध भंडारा की शुरुआत की गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जनता के बीच जो एक शब्द पॉपुलर हो रहा है वो है पौध भंडारा, ये क्या है?
0: पौध भंडारा है, हम जो यहाँ के विभिन्न जगह हैं वहाँ पर हम ये पौध का वितरण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले त्रिवटीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पौध का वितरण किया गया था, फिर उसके बाद अलकनाथ मंदिर पे पौध का वितरण किया गया। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं हम उनको निःशुल्क पौध देते हैं।
1: जी, तो कोई भी बरेली का ही इंसान ले सकता है आकर व्यक्ति?
0: जी, वहाँ पर पौध रहती है और कोई भी आके वहाँ पर पौध ले सकता है। और ये पौध भंडारा है, हम जगह जगह करते रहते हैं और लगभग हर जो आपके पॉपुलर जगह हैं वहाँ पर ये भंडारा हम लोग आयोजित करते हैं।
1: जी,

प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। जी हाँ, जुलाई का माह जब भी आता है तो चारों तरफ हम सभी को हरियाली दिखाई देने लगती है और मानसून के बाद तो जो स्थिति है वातावरण की वो काफ़ी सुहानी हो जाती है और सावन के माह का तो क्या ही कहना। लेकिन इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर चारों ओर हरियाली है और नर्सरी में जो पेड़ पौधे हैं वो इसे भी काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे सीबीगंज के इलाके को। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके

0: से यहाँ पर पौध भंडारा की शुरुआत की गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जनता के बीच जो एक शब्द पॉपुलर हो रहा है वो है पौध भंडारा, ये क्या है?
1: पौध भंडारा है, हम जो यहाँ के विभिन्न जगह हैं वहाँ पर हम ये पौध का वितरण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले त्रिवटीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पौध का वितरण किया गया था, फिर उसके बाद अलकनाथ मंदिर पे पौध का वितरण किया गया। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं हम उनको निःशुल्क पौध देते हैं।
0: जी, तो कोई भी बरेली का ही इंसान ले सकता है आकर, व्यक्ति?
1: जी, वहाँ पर पौध रहती है और कोई भी आके वहाँ पर पौध ले सकता है।
0: समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं सीबीगंज में और यहाँ पर लोगों को पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जनता आ रही है और पौध भंडारे से पौध लेकर भी जा रही है। सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है झुमका गिरारे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं सीबीगंज में और सीबीगंज जो कि नर्सरी से हरा भरा बना हुआ है, यहाँ पर लोग पौधे लेने के लिए आ रहे हैं और मुस्कुरा कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं लगाए जा रहे बल्कि पौधों का भंडारा भी हो रहा है, यानी कि पौधे बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से बरेली के लोगों के लिए आम बहार आपके द्वार और एक पेड़ माँ के नाम जैसे बेहतरीन अभियान चलाए जा रहे हैं और जनता को सचमुच ये पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं।

0: तो बरेली वालों झुमका तो फिर कभी ढूंढ लेंगे, लेकिन सीबी गंज नर्सरी आप जरूर आइए और एक पौधा लेकर जाइए। इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से FM रेनबो।
2: लिखिए, मेरा संदेश यह है कि बरसात आ गई है, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। जिसे जब भी आप शूज़ वगैरह पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो उसे ज़रूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में जो है छोटे छोटे जीव जंतु अगर इधर उधर आके कहीं बैठ जाए तो कम से कम सावधान हो जाए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कई दिनों से कपड़े अगर टंगे हुए हैं, शूज़ वगैरह अगर रखे हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मान लीजिए अगर छुपके बैठा ही है तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इस बात को लेकर बिल्कुल सतर्क रहना है। सर्दियों में क्या है, मतलब बरसात में ही नहीं, हर मौसम आप सतर्क रहिए। कभी भी कपड़े पहनिए तो उसे थोड़ा सा झटकार के, थोड़ा सा हिला के, जूते वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक करके, मतलब अच्छे से पहनिए। और अक्सर अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, गांव एरिया पे हैं, तो वहाँ अगर आप जूते रख रहे हैं तो या तो उसे प्लास्टिक में बकायदा रैप करके रखिए, अच्छे से रखिए, और या तो फिर पहनने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। वकील अहमद जी, गुड मॉर्निंग, बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारी, लिख रहे हैं कि बारिश के मौसम घर के आसपास सफाई की बहुत ज़रूरत है।

आगे लिखते हैं कि गमों के पल के बड़े मासूम होते हैं, ऐसे में लोगों के पास कई सवाल होते हैं। तन्हाइयों का वजूद मालूम होता है जिंदगी में जब कुछ ऐसे हालात होते हैं। इस समय हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अगला ईमेल जो आया है इनका भी पढ़ते चलते हैं लगे हाथ। तालिब अंसारी भैया लिखते हैं, गुड मॉर्निंग शिवम भैया, अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ढेर सारे ईमेल हैं, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर जाएगा। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। अवनीश कुमार का मैसेज चलते चलते पढ़ते हैं। हेलो सर, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं? मैं बाराबंकी से हूं और इनका संदेश है, मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पर कह दें। बेशक रिश्ते कम रहेंगे, मगर जो रहेंगे सच्चे रहेंगे। 11:31 शिवम आपके साथ, प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे।

0: जी हाँ, 11:40 और इस धमाकेदार म्यूजिक के साथ एक धमाकेदार आवाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हेलो हेलो।
1: रूठना मत मुझे मनाना नहीं आता, दूर जाना मत मुझे बुलाना नहीं आता। रूठना मत मुझे मनाना नहीं आता, दूर जाना मत मुझे बुलाना नहीं आता। आप मुझे भूल जाएंगे हम क्या करें, आप हमें भूल जाएंगे हम क्या करें, पर हमें तो भुलाना भी नहीं आता,
0: क्या बात
1: पर
0: है, क्या
1: हमें
0: बात है,
1: तो
0: क्या बात है,
1: भुलाना भी नहीं आता।
0: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन देखिए
1: अस्सलाम
0: ऐसा,
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से कर रही हैं बात?
1: जिला सीतापुर पचायनापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर और बताइए आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया है। लेकिन ये जो आपने शुरुआत जो की है बिल्कुल तड़कते भड़कते हो,
1: जी
0: एकदम बिल्कुल तड़का लगा के, तो मतलब हमें ये बताइए कि ये जो शेरो शायरी का जो एक दौर है।

0: जो अंदाज है, मुझे लगता है कि मतलब कि शौक लिखती लिखती भी हैं आप।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अब इसी अंदाज में हमें वो शायराना अंदाज में ही हमें आज का जो संदेश है वो भी हमें बता दीजिए।
1: संदेश भी देंगे, लेकिन पहले ये बताइए, इतने दिनों से आप कहाँ थे? आज हमारी बात आपसे काफी दिनों के बाद हो रही है।
0: हाँ, क्योंकि हमें हमें भी संदेश की जरूरत पड़ जाती है ना कभी कभी, मतलब छुट्टियां जरूरी हो जाती है ना, मान लीजिए कंटिन्यू अगर आप
1: हाँ
0: काम कर रहे।
1: तो वही कर

0: ये कंटिन्यू अगर आप
1: हाँ
0: काम कर रहे।
1: तो वही कह रहे। तो और हमें इतने दिनों के बाद बात हो रही है, तो अपने हालचाल बताइए, अपने घर पे सब लोग ठीक हैं? अब हालचाल बताइए हमको कुछ, और लखनऊ का मौसम का हालचाल बताइए।
0: बस मौसम का एकदम, मौसम का यही कहें कि जैसा मौसम आपके यहाँ है बिल्कुल वैसा ही मौसम हमारे यहाँ भी है। थोड़ी बहुत फुहारें इधर उधर
1: ठंडा
0: पड़ी हुई
1: मौसम
0: हैं
1: है इधर भी,
0: और बाकी सब एकदम बिल्कुल चकाचक। यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल
1: चकाचक
0: और।
1: होना चाहिए।
0: तो आज बताइए कि क्या संदेश दे रही हैं आज हमारे सुनने वालों को।
1: आज संदेश बिल्कुल छोटा सा दे रहे हैं कि जो गर्मी के मौसम में नारियल पानी पीते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो खाते पीते हैं जो भी कूड़ा कबाड़ा इधर उधर डाल देते हैं, बिल्कुल साफ सफाई का वहां भी ध्यान रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें।
0: ये बात भी जरूरी हो जाती है कि भाई सरकारी अस्पताल है या किसी भी अस्पताल में आप कहीं जा रहे हैं तो कम से कम इतना साफ सफाई का ध्यान रखें कि वहां पे अगर आप जाते हैं तो शिकायतें होने लगती हैं कि भाई इतना गंदा
1: जी
0: है ये
1: बिल्कुल,
0: वो।
1: साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी
0: क्योंकि हर चीज में दूसरे को दोषी देना से बेहतर है कि हम कम से कम उस कार पे, उस
1: जी
0: रास्ते पे चले कि भाई हम जो साफ सफाई अपनी तरफ से जितना भी सहयोग बन पड़ता है उसको जरूर निभाएं।
1: क्यों जी सर,
0: बताइए।
1: अभी तक हमने दिलवाले मूवी देखा था लेकिन आज हमने गांव का नाम सुन लिया, दिलवाले। कितना प्यारा नाम।
0: हाँ, राजस्थान में ये एक गांव है और
1: हाँ, जो एक भैया फोन किए थे राजस्थान से, दिलवाले गांव, कितना प्यारा नाम है।
0: जी, और हमारे भारत की विविधताएं इसी में समाहित भी हैं कि तमाम तरीके के क्षेत्र में तमाम तरीके के प्यारे नाम, जगह के नाम,
1: जी सर, हम
0: भाषा,
1: अपने
0: बोली।
1: दोस्तों के कुछ नाम लेना चाहते हैं।
0: जल्दी से ले लीजिए एकदम तुरंत।
1: रिंकी पिंकी, साहिबान अंसारी, साजिया अंसारी, आरजे पूनम, गुलाब साप्पी, वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, सत्यम कुमार भाई, मोहम्मद फैज भाई।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा
1: जी
0: आपसे बात
1: आजाद
0: करके।
1: अख्तर भाई, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ, वो तो दिख रहा है हमें। तो 11:43 आपसे बहुत बात
1: ओके
0: करके बहुत
1: बाय।
0: शुक्रिया, बाय। और आप अभी हमें फोन कर सकते हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी ईमेल कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां जहां बारिश पड़ी है उनके लिए ये वाला गाना तो जरूर बनता है, और जहां जहां नहीं पड़ी है हो सकता है इस गाना सुनने के बाद बादल थोड़े से तरस खा जाए और बारिश करा जाए।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून 200.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, 11:49 हो गया है और आपको बता दें कि विकास जी का ईमेल हमारे तक पहुंचा है। लिखते हैं, हेलो सर नमस्कार, मैं विकास, गांव सलीत, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब झक्कास चल रहा है और इन्होंने एक फोटो भेजी है जो कि मेरी है, और हालांकि इन्होंने संदेश कोई नहीं दिया है। विकास जी बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। हेलो डियर शिवम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरा संदेश ये है कि स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। अपने आसपास सफाई रखें, बीमारियों को दूर भगाएं और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो पर। और ऐसा ईमेल लिख के भेजी है एमन नवाब संडीला से। बहुत शुक्रिया आपका एमन हमें ईमेल करने के लिए। वारिस अली खान साहब भी हमें ईमेल कर रहे हैं, बहुत ही शानदार सा ईमेल है। लेकिन उससे पहले एक हमारे दोस्त जो फोन कॉल पे जुड़े हुए हैं, हेलो।
4: दिल ने जिसका नाम लिया है, जिसका दामन थाम लिया है, जब दर्द उठा है दिल में, मैंने तेरा नाम लिया।
3: क्या बात है, दिल में जिसका नाम लिया है हमने उसका दामन थाम लिया है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाइन। क्या नाम है जनाब आपके?
4: मेरा नाम अल्तमश अली।
3: अल्तमश जी, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM पर। बहुत ही शानदार लाइनों के साथ आपने आगाज किया। क्या करते हैं आप?
4: जी सर, पढ़ाई करते हैं।
3: पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं आप?
4: और सर, आपके गाने सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं।
3: बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया के अलावा आप हमें ये भी बताइए कि आज जो संदेश है वो क्या दे रहे हैं?
4: संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे अभी हाई स्कूल में जो लोग आए हैं वो ज्यादा रिवीजन करें, 2 घंटे तो जरूर पढ़ें। और बहुत, अगर आप फेल हो गए तो आपको शर्मिंदगी बहुत महसूस होगी।
3: जी हाँ, ये तो बात सही है, अक्सर ऐसा होता है। समाज हमारा जो है उस ओर जरूर खींच के ले जाया कि अरे तुम नंबर नहीं अच्छा नहीं ले पाए या असफल रहे, इससे हमें लड़ने की बहुत जरूरत है ना?
4: सर, मैं सर हम नाम लेना चाहते हैं।
3: बिल्कुल ले लीजिए, तुरंत तुरंत जल्दी से।
4: बाबू अंसारी, सत्यम कुमार।

0: तकरीबन साहिब हैं, साहिबा अपनी हैं और गुलफ्ता सिद्दीकी अपनी हैं और यून अपनी हैं मोहम्मद आसिफ।
1: चलिए बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, अरे फ़ोन करने के लिए अल्तमश। आप हमें ऐसा ही फ़ोन करिए और बात करते रहिए और अपने विचार हमसे साझा करते रहिए। 11:51 और ये वाला गाना जो है ना, आप थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके सुनिएगा और सुन के बताइएगा ज़रूर ये गाना कैसा लगा।

0: भाई साहब देखिए, हम नाम नहीं भूलते, हमें सबका नाम याद है। अहमद नवाब, तालिब अंसारी, नाजिम रैन, विकास, वारिस अली खान, तेज बहान, सुशील गुप्ता, मोनू भैया, गुलाबसा सिद्दीकी और तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ईमेल करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे नाम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, और मुझे लग रहा है कि इनका फोन कट गया है शायद। हेलो हेलो जी, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हेलो,
1: जी, हमारी आवाज आपको तो आ रही है? आपको नहीं आ रही हमारी?
0: हाँ आप बताइए क्या नाम है आपका?
1: जी, साहिबा अंसारी, महवागन जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, और ये बताइए कि जल्दी से संदेश दे दीजिए।
1: संदेश ये रहना चाहते हैं कि जब जहाँ पे बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ भी बारिश हो रही है उसके बाद, बारिश होने के बाद जो छत के ऊपर दाना और पानी भी रख दें, क्योंकि जब पानी नीचे भर जाता है तो जानवरों को भी खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो छत के ऊपर डाल दें, जमीन में तो उनको मिलता नहीं जब बारिश हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि पानी बारिश से जो है वो सारे बह जाते हैं, है ना।
1: जी,
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे
1: अच्छा हम
0: बात
1: एक
0: कर,
1: नाम भी लेना चाहते हैं,
0: बिल्कुल जल्दी से लीजिए।
1: हमारे अल्तमस भाई हैं सीतापुर से। वैसे मैं एक ही लेना चाहिए कि समय भी नहीं है।
0: नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की। और

अब मुझे यानी शिवम को दीजिए अनुमति और एक बेहतरीन से गाने के साथ आपको छोड़े जाएंगे। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और दिन किसी और शो में। तब तक आप जरूर सुनिए और अगला प्रोग्राम शिखा के साथ। बहुत ही लाजवाब शानदार एकदम धनाधन तैयारी कर रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है, गाने सेट कर रही है। भाई साहब मुझे लग रहा है आने वाला प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है, तो सुनिएगा और धड़कनों को थोड़ा लगाम लगाइए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान बिनटैग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान पदक से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 4:30 बजे काशी पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। फिर काल भैरव मंदिर व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। शाम को आयुष राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। कल सुबह मुख्यमंत्री

दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ करेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुल 8,815 श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए। इनमें से 3,989 तीर्थयात्री बालतल मार्ग से और 4,826 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए कुल 363 वाहन तैनात किए गए थे। दोनों मार्गो पर तीर्थयात्री की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है और मुंबई स्थित मलगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिश्र से होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: जनाब अली,
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

जी नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं और शिखा हाजिर हो गई है प्रोग्राम शत्रुपा लेकर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम शत्रुपा में हर रोज कुछ ना कुछ खास और स्पेशल होता है हमारी स्टनिंग लेडीज के लिए। और आज का सेगमेंट तो बेहद ही खास है हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि आज का सेगमेंट देता है उन्हें गॉर्जियस लुक। तो गॉर्जियस लुक से मुझे लग रहा है कि आप गेस करने लगे होंगे कि आज बातें क्या होने वाली हैं। तो आप गेस करिए और हम अभी आपसे बातें करने वाले हैं ढेर सारी। तो बस बातें शुरू हों आपके

हम तो ऐसे हैं भैया, बिल्कुल सही बात है कि जैसे हम हैं वैसा तो कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल सही है ना ये बात। तो इस प्यारे प्यारे से ट्रैक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में एक बार फिर से। दोस्तों, गर्मियों में खुद को कूल और स्टाइलिश बनाए रखने के लिए आप अपने लुक में कई बदलाव लाती हैं, जो मतलब हम लोग सोचते हैं ना किस चीज में कंफर्ट मिल जाए हमें। तो वो बदलाव क्या क्या होते हैं, जैसे हल्के और सूती कपड़े पहनना, सफेद पेस्टल और हल्के शेड्स को चुनना और सिंपल हेयर स्टाइल में बांधना शामिल है खुद को। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो क्या है, तो फुटवेयर का क्या है भाई, फुटवेयर का कैसे हमें कैसे अप्लाई करना है इस सीजन, तो वो आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो क्या आप ले देकर वही पुराने स्टाइल के सैंडल और हील्स पहन रही हैं जो पांव को आराम महसूस नहीं होने देते? तो वक्त है बदलाव का। तो इस बार अपने समर आउटफिट्स के साथ ऐसे फुटवेयर को जोड़ें जो कूल, स्टाइलिश और आरामदायक हो। तो ये काम की बात जो आज हम करने वाले हैं आपसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बने रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। बातें तो अभी और भी हैं करने के लिए आपसे, बहुत ढेर सारी की हाँ बातों का पिटारा है हमारे पास आपसे करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं लौट कर और बातें करते हैं आपसे।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जी 12:20 का वक्त और आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ और बातें कर रहे हैं हम ऐसे फुटवेयर की जो हमें दिखाएंगे स्टाइलिश। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फुटवेयर की जो हमें कूल और स्टाइलिश और आरामदायक लुक देंगी। तो हम लोग अपनी चीजों को लेकर कितने कॉन्शियस होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब जरा जरा सी चीजें हम ध्यान देते हैं तो वो जरा जरा सी चीजें मिलकर हमको देती हैं स्टनिंग और गॉर्जियस लुक। तो बात करने वाले हैं फुटवेयर की, तो फुटवेयर में सबसे पहले हम आज बात करेंगे ओपन टो फ्लैट्स फुटवेयर की, जिसका क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऑफिस हो या कॉलेज हो या कैजुअल आउटिंग, हर मौके पर ये परफेक्ट नजर आते हैं। खुले पंजों वाले ओपन टो जो ये पैरों को हवा देते हैं ना, इतनी सुकून मिलती है, और उसकी जो सुकून तो जो मिलता ही मिलता है, उससे पैरों की जो खूबसूरती होती है वो भाई क्या कहने क्या कहने। और जब आप ऐसे फुटवेयर पहनते हैं तो कंफर्ट तो देते ही देते हैं, और साथ में आपसे लोग ये जरूर पूछते हैं बहुत प्यारी लग रही हो, क्या बात है, क्योंकि हमारा जो फुटवेयर है वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है।

फैशन अगर कहें फैशन का। तो ओपन टो फ्लैट्स फुटवेयर की हम बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि मार्केट में ये अलग अलग रंगों, डिजाइनों और मटेरियल में आसानी से उपलब्ध हैं। तो जब आसानी से उपलब्ध हैं और आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें इजिली ले सकते हैं और आप जैसा स्टाइल चाहते हैं वैसी स्टाइल आपको इनमें मिल जाएगी। तो देखा आपने कि आज कितनी काम की बातें हो रही हैं। जी हाँ, क्योंकि शत्रुपा के हर सेगमेंट में हम आपके लिए एक ऐसे कुछ ऐसे ट्रिक्स और ट्रिप्स लाते हैं जो आपको बनाते हैं सुपर एक्सपर्ट। कोई ऐसा वैसा एक्सपर्ट नहीं, आप बन जाते हैं सुपर एक्सपर्ट, जो आपसे और भी जो जितनी महिलाएं हैं वो टिप्स लेती हैं। और आप जब टिप्स देती हैं तो आप ये जरूर बताती होंगी, भाई जो एक प्रोग्राम आता है शत्रुपा 100.7 FM पे, आप उसको जरूर सुनिए, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है ना वो आपको सिंपल से बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। बातें तो अभी हम आपसे करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारी प्यारे प्यारे लिसनर्स सुन रहे हैं हमें, उनका ये रहता है कि भाई बातें तो होती रहे लेकिन साथ में एक बढ़िया सा ट्रैक भी उनके पास पहुंचता रहे। तो एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, तो आप और हम दोनों एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 12:30 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आज शत्रुपा में, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। तो फैशन ऐसा जो चेंज कर दे हमको और लोग कहें कि वाह क्या लग रही हो। और हम महिलाएं हर चीज को लेकर कितने कॉन्शियस होते हैं, चाहे वो हमारा सूट हो, चाहे वो हमारा फैशन हो, कोई भी चीज हो, चाहे आई मेकअप हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे नेकलेस हो, या कोई भी, जैसे कहते हैं ना, ज्वेलरी, अगर हमारी चीजें हैं, हमें जो चीजें हैं हमें देखनी रहती हैं, हम हर चीज को लेकर कितने ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और जब बात आती है फुटवेयर की, तो हमारे मन में जो एक चीज क्लिक करती है वो है, सबसे पहले जो क्लिक करती है चीज वो है क्या, कंफर्ट। तो हम ऐसे फुटवेयर लेना चाहते हैं जो ना केवल देखने में स्टाइलिश हो,

बल्कि एक कंफर्ट देने वाली भी हो। तो अगर आपके मन में भी ये सब चीजें घूमती हैं तो म्यूल्स बैक ओपन डिजाइन वाले फुटवेयर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जी हाँ, आपने सही सुना, म्यूल्स बैक ओपन डिजाइन वाले फुटवेयर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जो हर मौके पर आपको परफेक्ट लुक देते हैं, साथ ही आप इन्हें पहनकर कंफर्ट भी फील करते हैं। इस समय मार्केट में म्यूल्स में फ्लैट से लेकर हील्स तक कई ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम बिल्कुल फ्लैट हो, फ्लैट हमारी जो फुटवेयर पहने बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल हील ना हो। कुछ लोगों की ये पसंद भी होती है और कुछ लोग सोचते हैं कि उसमें भाई हील्स होनी चाहिए। तो म्यूल्स एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए कि इसमें आपको हर तरीके की ऑप्शन मिल जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। लेदर, वेलवेट, सिंथेटिक और प्रिंटेड डिजाइनों में ये फुटवेयर हर ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। जी हाँ, आपने कोई भी ड्रेस कैरी करी हो, लेकिन ये जो ओपन बैक म्यूल्स है ना, ये सारी ड्रेसेस के साथ बिल्कुल बिंदास लगते हैं। तो अगर हर ड्रेस में आप दिखना चाहती हैं गॉर्जियस, तो ये फुटवेयर जरूर ट्राई करें। और जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ये जो जितने भी अभी मैंने बात करी है, जितने भी फुटवेयर की बात करी है, तो ये सब फुटवेयर आप इस सीजन इजिली पहन सकते हैं और ये आपको स्टनिंग तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही कंफर्ट भी देंगे। तो बातें अभी ढेर सारी बहुत है करने के लिए आपसे, लेकिन इंतजार है आप सभी को एक प्यारे से गाने का, तो वो बिल्कुल रेडी है आप तक आने के लिए। तो चलिए प्यारा सा ट्रैक पहुंचाते हैं आप तक, फिर लॉन्च कराते हैं और बातें करते हैं कि कौन कौन से और फुटवेयर अभी रह गए हैं आपको बताने के लिए। तो बस स्टे ट्यून 200.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रोजाना। जी हाँ, रोजाना का ये जो काम है हम लोगों का, ये कभी कम ही नहीं होता। कितने काम रहते हैं भाई, बाहर के काम, घर के काम, लेकिन उसमें सबसे प्रायोरिटी पे जो काम होना चाहिए वो है खुद की देखभाल। तो अक्सर हम सोचते तो हैं कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। तो बस वही बातें और वही जो टिक्स और ट्रिप्स हैं वो हम आपको देते हैं। क्या देते हैं? कि आप उस चीज को सुने और समझे, और समझे कि आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, और अपने को बनाइए और सवारिए जिससे लोग आपसे कहें कि वाह क्या दिखती हो, क्या करती हो। और जब सीजन हो गर्मियों का, तो दिमाग में सबसे ज्यादा एक सवाल जो स्ट्राइक करता है वो है कंफर्ट का। और वो कंफर्ट हर चीज में होना चाहिए, कपड़ों में होना चाहिए, जो भी चीजें हम करें उसमें होना चाहिए। हम अपने कंफर्ट को प्रायोरिटी दें तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पांव को आराम मिले और साथ ही आप सुंदर भी लगे, तो आपके पैरों को आराम और स्टाइलिश लुक देंगी स्ट्रैपी प्लेट सैंडल। जी हाँ, आपने सही नाम सुना, स्ट्रैपी प्लेट सैंडल। तो गोल्डन सिल्वर प्रिंटेड और ब्राइट कलर्स में उपलब्ध ये स्ट्रैपी फ्लैट्स वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक हर स्टाइल के साथ मैच करती हैं। आपको दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाना है कि हम अगर ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रहे हैं तो उसके साथ हम इसको पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकती हैं। और अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं तो उसमें भी आप इन सैंडल को पहन सकती हैं। और आपको एक अच्छी वाली बात बता दूं कि ये जो स्ट्रैपी फ्लैट सैंडल्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये आज फीमेल्स की वार्डरोब का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अभी तक अगर आपने ये सैंडल नहीं ट्राई करी है तो आप जरूर से ट्राई करिए, और आप इस दिन को, मतलब आज के सेगमेंट को जरूर से याद रखेंगे कि वाह क्या हमको बात बताई गई थी कि स्ट्रैपी फ्लैट सैंडल, तो ये आपके जो लुक को ना इनहेंस करेंगी। और आपको बता दूं कि जब कोई भी मौका हो, कोई भी ओकेजन हो, तो आप इस तरीके की जो स्ट्रैपी फ्लैट सैंडल है ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो बातें हो रही है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग है, तो जितने भी हमारे लिसनर्स हम

जुड़ी हैं और सुन रहे होंगे हमें, वो ये बात कह रहे होंगे, वाह आज अगर मैंने ये सेगमेंट मिस कर दिया होगा होता तो क्या होता। बिल्कुल जी हाँ, आपको जुड़े रहना है हमसे और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा आपके साथ।

12:47 का वक्त और आज ये दोस्त है आपकी शिखा आपके साथ और बातें हो रही हैं फुटवेयर को लेकर कि किस तरीके की फुटवेयर आप पहन सकते हैं जिससे आपको इस सीजन मिल जाए कंफर्ट। तो भाई हम आपको बता दें कि जो हम महिलाएं हैं ना इतने क्रेजी होते हैं हर चीज को लेकर। अगर बात जब फैशन की हो तो हमारा दिमाग इतनी तेज दौड़ता है कि क्या बताएं। तो जब बात हो फुटवेयर की तो क्लॉग्स को ट्राई करना बनता है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्लॉक्स को ट्राई करना तो बनता है। ये कूल और ट्रेंडी जो क्लॉक्स होते हैं ना, इनका मोटा सोल और ओपन डिजाइन आरामदायक होने के साथ ही एक स्टाइलिश और कूल लुक देता है। और क्लॉक्स आप जीन्स स्कर्ट शॉर्ट्स और कुर्तियों के साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये लंबे समय तक पहनने पर भी थकान महसूस नहीं होने देते। वाइब्रेंट कलर्स, कटवर्क डिजाइन और लाइट वेट के कारण ये कैरी करने में बहुत इजी होते हैं। तो क्यों हुई ना आज मजेदार बातें? तो बातें अभी और हैं क्योंकि अभी हमारे पास 11 मिनट हैं आपसे बातें करने के लिए। जी हाँ प्रोग्राम शत्रुपा में, तो बस बने रहिए और ये प्यारा सा ट्रैक साथ में एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं और कुछ बातें आपसे जो रह गई हैं वो करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी हाँ, प्रोग्राम शत्रुपा वाइंड अप करने का टाइम हो गया है और एक प्यारे के साथ, प्यारे से एक सॉन्ग के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं इसी वादे के साथ। प्रोग्राम अगले अगले प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में भी मैं ही रहूंगी आपके साथ शिखा। तो चलिए एंजॉय करते रहिए ये प्यारा सा ट्रैक और फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।

जी तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे हम, जब इतना खूबसूरत सी लगेंगी आप तो हर कोई आपसे यही कहेगा कि तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे हम। तो बस इसी बात के साथ शिखा को दीजिए इजाजत।

और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक अश्विनी, गोविंद टोनी, लव दीवान और राधे भावेक। साथ ही आपको बता दें कि ये हैं हमारे श्रोता जो कि इस गाने को सुनना चाहते हैं, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, आदेश नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान, पाकिजर रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद एमपी से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके, अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में आपने एक गाना सुना, फिल्म का नाम परिणीता। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजौरिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक और मीका विरक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, और इस प्रोग्राम में आप अपने पसंदीदा गानों को सुनते हैं और साथ ही आप चिट्ठी लिख सकते हैं अगर आपका कोई पसंदीदा गाना है और इस गाने को आपके अपने प्रोग्राम में आपको सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि आप जो लेटर है वो लिख सकते हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी बरेली, पिन कोड नंबर 243001 पर। फिलहाल आपको बता दें कि ये गाना हमारे श्रोता सुनना चाहते थे उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुवर्णम, सत्यम बोर्डागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत भी इस गाने को सुनना चाहते थे, दुर्गा कॉलोनी हाजी से राजू मिगलानी, बबिता सुभाष योगी, डब्बू और बप्पू। और अब आपको सुनाते हैं ये गाना, फिल्म का नाम है ब्रदर्स, आवाज सोनू निगम नीति मोहन।

और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, मनीष यूनुष और इनके परिवार के सदस्य हमीरपुर उत्तर प्रदेश से।

मनी रामपाल, मलखान सिंह, सुधांशु और हिमांशु। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद तयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी। दहगांव नादुरा से धोडू भातुरकर, मंगला, विवेक, भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान और इनके परिवार के सदस्य। ग्रामर पोस्ट हरहरपुर मटकली। जिला बरेली से शारुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है ब्रदर्स, जिसमें आवाज सोनू निगम और नीति मोहन की।

0: गाने को।
1: और अब ये गाना आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रियतमा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद दयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप रामगढ़ कैन, झारखंड से निप्पी साहनी, कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदेश दिवाकर, लव ओम अमींद्रपुरी और कल्लू मस्ती भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बहेड़ी से अंजुम और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत, हरहरपुर मटकले जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम है प्रियतमा।

और ये गाना आपने सुना फिल्म सूर्यवंशम से, जिसमें आवाज़ कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत, और बारी अगले गाने की, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में। इस गाने को आप सुनना चाहते हैं ग्राम आनंदपुर दुनका मीरगंज बरेली से जितेंद्र सिंह राजपूत और प्रभा राजपूत, पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास आशा देवी, मामूलवाडी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे वसंतराव पी एस नवरकर, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल और लक्षिता, साथ ही उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी भारती लखान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना आपके अपने प्रोग्राम अनुरोध गीत में। फिल्म का नाम है संघर्ष, सोनू निगम की आवाज में।

सोनू निगम की आवाज फिल्म का नाम संघर्ष, ये गाना आपने सुना और इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। और बारी अगले गाने की, फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट, तुलसी कुमार अमाल मलिक की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय और किट्टू, साती यवतमाल, विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद, लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत अर्पिता, रेखा ईशिका, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन एमपी से हैं, नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल सिया, झालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता ओम, सुभाष यादव, चंदन एकनाथ और संगीता, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, आनंदपुर दुनका मीरगंज बरेली से जितेंद्र सिंह राजपूत और प्रभा राजपूत। ये गाना आप सभी के अनुरोध पर, फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट, तुलसी कुमार अमाल मलिक की आवाज़।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, और आप सुन रहे हैं ये गाना जावेद अली की आवाज में, फिल्म का नाम है बर्फी। और साथ ही आपको बता दें कि इस गाने को आप

भी सुनना चाहते हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से सोनू कश्यप, शीतल और मुकेश, काजल, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम कृष्णा देवांगन, बैंक सेंटर चनेटी बरेली कैंट से रागिनी विनेश और मुस्कान, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी, निमित आहूजा, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वर्णलकर, वीणा विविधा, सागर से राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला, ये हैं हमारे श्रोता। धरोनी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक, दहीगांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर, मंगला विवेक, भारती प्रतीक्षा, कोमल समाधान, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जावेद अली की आवाज में।

तो जावेद अली की आवाज में फिल्म पुष्पा से ये गाना आप सुन रहे हैं और इसी के साथ आज का प्रोग्राम अनुरोध गीत, बाकी के प्रोग्राम मेरे सहयोगी अमृता के साथ, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की पहली कव्वाली आप सुन रहे हैं मधुर शर्मा की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, कार्यक्रम है रस रंग। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली, आवाज है नुसरत फतेह अली खान की।

रस रंग आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर और अब समय है कार्यक्रम की अंतिम गजल की। ये गजल आप सुन रहे हैं चंदन दास की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार श्री रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं, बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को

0: जाते हैं, जैसे नदी
1: जी
0: के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर,
1: या किसी
0: झरनों के
1: डैम, जी
0: पास।
1: डैम के पास चले जाते हैं, फिर
0: हाँ,
1: एक तेज कहीं पे जैसे
0: लहर
1: पानी
0: आती
1: की
0: है।
1: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन बन जाता है, वो रील जो है हर जगह
0: वो रील
1: आने
0: मोबाइल
1: लग
0: से ही
1: जाती है।
0: पानी में चला जाता है और खुद
1: बिल्कुल,
0: भी पानी के
1: खुद
0: अंदर
1: भी
0: चले
1: पानी के
0: जाते
1: अंदर
0: हैं,
1: चले जाते हैं।
0: और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन
1: जी
0: कि भाई हमारा हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है। तो बिल्कुल,
0: कमेंट,
1: कमेंट, लाइक,
0: आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे
1: और
0: तुमने
1: सब,
0: मेरे लाइक नहीं किया।
1: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं। तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं
0: वक्त कितना
1: मिले।
0: चला जाता है
1: जी
0: दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन
1: जी
0: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक
1: जी
0: कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और
1: जी
0: जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे,
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं, कि
1: बिल्कुल,
0: अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है, तो
0: मैं तो
1: बिल्कुल
0: डर
1: जरूर
0: गई दीपा
1: बताइए।
0: जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी, भैया यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख
1: बताएं।
0: तो रहे हैं हम भी,
1: जी
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ
1: आ
0: चुके
1: चुके
0: हैं
1: हैं।
0: और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं।
1: पहुंचाते हैं।
0: तो
1: जी
0: अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: याद है
1: जैसे
0: आपको?
1: कि याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर।
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे,
0: कहा
1: और
0: जाता
1: वो
0: है
1: जी
0: कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही।
1: हो गई नहीं।
0: ऐसे
1: हाँ
0: जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां
1: हाँ
0: हैं, जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ
1: इसी
0: को
1: तरह से
0: मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वो सीधे, लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो,
1: जी
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात
0: तो
1: करते थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज
1: चलिए
0: परीक्षा
1: आज
0: होती
1: जानते हैं।
0: है।
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगे क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: बैठ
1: जाता है और
0: जाता है।
1: उसका मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है फिटनेस कम, एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी?
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस

0: विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से एमबीए पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निःशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहाँ उन्हें अक्सर जो अपनी माँ उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत

0: बद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल हैं कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
0: जी।
1: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहाकर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
0: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
1: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
0: चलिए। हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।

0: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े कितने नहीं
1: घटे।
0: घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें।
1: जी
0: और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
1: प्रसिद्धि
0: और
1: है जी।
0: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार।
0: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल
1: जी
0: मीडिया पर,
1: जी
0: आप
1: जी
0: ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे
1: दिखाई
0: जाती
1: पड़ती
0: है,
1: है जी, तो मालूम पड़ जाता
0: और
1: है।
0: रात को उठ के 2, 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने
1: जी
0: दिल का साइन लगाया।
1: हाँ,
0: वो भी अब
1: ये
0: एक अलग
1: भी
0: पैमाना बन गया है कि अरे
1: जी।
0: उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए,
1: जी
0: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं, सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर
1: बिल्कुल
0: देते हैं।
1: बिल्कुल
0: इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे, और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा
1: जी।
0: करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम

0: मिलती जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, श्रोताओं मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।

0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन कर

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज
0: के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाए।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देख।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड है। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है। इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती?
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है।
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ। खादे आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो

0: हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
1: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
0: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
1: शुक्रिया। मिस्र की तीन खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
1: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
1: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा ना

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा न निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: हे श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
3: कार्यक्रम आपके बाद आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ
1: दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: हे श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा

0: 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
1: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
1: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
1: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
7: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। मैं हूं अमृता, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमेशा से एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, और आज का हमारा विषय है देर आए दुरुस्त आए। तो आइए इसी विषय पर हमारे श्रोताओं के विचार जानते हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलते हैं हमारे पहले कॉलर की ओर। हेलो।
8: हेलो जी, नमस्ते।
7: नमस्ते, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
8: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
7: प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप महाकाल की नगरी से बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज का विषय है हमारा देर आए दुरुस्त आए।
8: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे देर आए दुरुस्त आए, और इस तरह बताएंगे आपको कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और ऐसे सामने से कोई घटना ऐसे मतलब हो जाती है, या ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर समय का कुछ नहीं कह सकते और ऐसा हो जाए और हमें कहीं बीच में अगर कोई रोक लिया जाए और हम उस घटना मतलब हो उससे बाद में पहुंचे वहां पर, तो ऐसे कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम को समय पर पूरा करना होता है, उसके लिए हमें रिक्शा भी उठाना पड़ता है, तो देर आए दुरुस्त आए ये बात अलग है, और काम को पूरा करने के लिए जल्दी पहुंचना वो बात भी अलग है।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, भले ही थोड़ी देरी हो जाए लेकिन सही

0: ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप महाकाल की नगरी से बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज का विषय है हमारा देर आए दुरुस्त आए।
0: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे देर आए दुरुस्त आए, और इस तरह बताएंगे आपको कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और ऐसे सामने से कोई घटना ऐसे मतलब हो जाती है, या ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर समय का कुछ नहीं कह सकते और ऐसा हो जाए और हमें कहीं बीच में अगर कोई रोक लिया जाए और हम उस घटना मतलब हो उससे बाद में पहुंचे वहां पर, तो ऐसे कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम को समय पर पूरा करना होता है, उसके लिए हमें रिक्शा भी उठाना पड़ता है, तो देर आए दुरुस्त आए ये बात अलग है, और काम को पूरा करने के लिए जल्दी पहुंचना वो बात भी अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, भले ही थोड़ी देरी हो जाए लेकिन सही।

0: बात मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, इतनी दूर से आपने हमें कॉल की। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और आज जी, और आज का विषय है हमारा देर आए दुरुस्त आए, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, ये बहुत अच्छा ही विषय है, और जो देर से आता है वो दुरुस्त, वो कंपलसरी दुरुस्त ही आता है मैम
0: जी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपकी कॉल आज लगी है, तो क्या ये इसके लिए भी कह सकते हैं कि आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, आपकी कॉल लग गई?
1: जी जी मैम, बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है मैम
0: जी। हमें भी बहुत खुशी होती है हमारे श्रोताओं से बात करके। और जैसा कि विषय है कि देर आए दुरुस्त आए, भले ही थोड़ा समय लग जाए लेकिन इंसान को सही मार्ग पर पहुंचना बहुत जरूरी है, और मंजिल पर पहुंचना जरूरी है।
1: तो काम करने से पहले एक बार सोचते हैं, उसके बाद करते हैं।
0: बिल्कुल, सोच समझ के ही हमें काम करना चाहिए। रास्ते में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए या भटक जाए वो बात अलग है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना आवश्यक होता है।
1: जी मैम, बिल्कुल। जी मैम, इधर मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सिलाई का
1: काम करते हैं। आपका प्रोग्राम सुनते हैं,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, आप जुड़े हुए इतने दूर से भी सारे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और आज आसिफ अंसारी जी, आपकी कॉल लगी है, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, एक सॉन्ग है, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
0: जी, राज फिल्म का गाना है ये।
1: राज फिल्म का मैम, आप लोगों के प्रोग्राम में बहुत लाजवाब लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ अंसारी जी, आप ही के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे श्रोताओं को पसंद आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए।
1: थैंक यू।
0: तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी भैया जी।
0: जी कौन श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी आपको हमारा सादर प्रणाम। हम महाराष्ट्र के यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
0: संतोष खड़से जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं आप, उसके लिए भी धन्यवाद।
1: और जी धन्यवाद रणन जी, शुक्रिया। और आपका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रति सप्ताह आपके कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। जैसे भी समय मिलता है आपके कार्यक्रम सुन लेते हैं।
0: बहुत
1: बहुत आपकी बात कार्यक्रम में जो विषय का चयन करते हैं आप बहुत ही सोच समझ कर और समय अनुसार करते हैं, क्योंकि हम सुनना बहुत पसंद करते हैं उसे।
0: ये बहुत अच्छी बात है संतोष जी कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद है और जो विषय चुनकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं वो पसंद है। आज का विषय है देर आए दुरुस्त आए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जी जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि कभी हम कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम करने से चूक जाते हैं या रह जाते हैं, तो इसे अपना अवसर खो दिया ऐसा ना समझ कर पूरी शिद्दत से और प्रयास करके हम यदि वो संधियां तो ऐसे अवसर अपने जीवन में आते ही रहते हैं, यदि वो अवसर आता है तो पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ हम पूरा न्याय करें, पूरी कड़ी मेहनत के साथ अपना पूरा 100% उस कार्य के लिए दे, और हम ऐसे अपने प्रयासों के साथ उस काम में पूरी तरह अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर सकते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो कहावत है, कहते हैं ना कि शेर दो कदम पीछे इसलिए नहीं लेता कि वो हार जाता है, क्योंकि वो अगली ऊंची और लंबी छलांग लेने के लिए दो कदम पीछे लेना पड़ता है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं। तो उसका तात्पर्य भी यही ऐसा ही होता है कि यदि हमें कुछ अवसर मिल जाता है तो उसे थोड़ी देर से ही भली, लेकिन हम पुनः प्रयास करके उसे प्राप्त कर सकते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण देके आपने अपनी बात रखी है, जिससे बहुत सारे हमारे श्रोता भी जरूर तारुक रखेंगे कि कितने अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। और संतोष खड़से जी, आज आपकी कॉल लगी है तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: विजय पथ इस फिल्म का है और गीत के बोल है, ये आपका इंतजार था, देर लगी आने में हमको, शुक्र है फिर भी आए।
0: जी संतोष खड़से जी, हम भेज रहे हैं आपके पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: तो हम आज के भाग दौड़ की जिंदगी में बिल्कुल टाइम टू टाइम निकलते हैं
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद हॉर्न से किसी से मतलब इतना जल्दी करते हैं कि पिछले वाले आगे वाला इंसान को दुखी कर देते हैं कि वो जल्दी हट जाए, जल्दी से पहुंच जाए अपने मंजिल तक। और जितना हाथ हमारा रहता है कि हम टाइम से टाइम निकलेंगे तो ऐसे तो होगा ही, कहने मतलब ये कि हम थोड़ा सा घर से पहले निकले 10 मिनट तो शायद इन चीजों से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि भले ही रास्ते में देरी हो जाए लेकिन मंजिल पर सही सलामत पहुंचना बहुत
0: जरूरी है। सही सलामत पहुंचे और इसलिए घर से थोड़ा सा टाइम देकर निकलेंगे। कई बार देखा है रेलवे फाटक बंद है और लोग उसके बावजूद भी ऐसे हादसे से हो जाते हैं कि वो पंखे के नीचे से गाड़ियां निकालना चालू कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक भी होता है, जल्दबाजी में लोग बंद फाटक से निकलने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सही कहा आपने। तो सुल्तान रजा जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: मूवी का नाम है सोल्जर, गाने के वो ना तेरा रंग बल्ले बल्ले
1: जी। और आपको
0: आकाशवाणी बदलने के लिए सर मैम कहे तो सुना दूं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भूल कभी दोबारा नहीं खिलता, भूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलने को तो मिल जाते हैं बहुत से चैनल, मिलने को तो मिल जाते हैं बहुत से चैनल, लेकिन 100.4 FM जैसा चैनल नहीं मिलता।
1: क्या बात है सुल्तान रजा जी, बहुत ही खूबसूरत शेर आपने आकाशवाणी के लिए सुनाया और बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और आज हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे, कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: जी मैम, मैं सत्येंद्र सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं विश्वविद्यालय से बात कर रहा हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले से।
0: ठीक है, मतलब बरेली से बात कर रहे हैं। तो सर, आज का हमारा विषय है कार्यक्रम में देर आए दुरुस्त आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
1: इसके बारे में मैम यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई काम देर से भी हो लेकिन सही तरीके से और अच्छे परिणाम के साथ हो तो वह देर स्वीकार्य है।
0: जी,
1: यानी देर से पहुंचना या काम पूरा करना उतना बुरा नहीं है जितना गलत तरीके से करना।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम अच्छे से करना चाहिए, इसका परिणाम हार्दिक हो, अच्छा हो।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए और मंजिल की प्राप्ति होनी चाहिए, तो देर से आना भी दुरुस्त हो जाता है। तो आज आपकी कॉल लगी है सर, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: आपने का फिल्म सुना दीजिए।
0: ठीक है सर, हम भेज रहे हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद अंसारी जी, स्वागत है आपका। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है देर आए दुरुस्त आए, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई सही काम है, अगर कोई गलत काम में पड़ गया है, तो अगर वो उसका जब भी नशा उतरेगा या उसको होश आएगा, तो अपने आप को वो सुरक्षित कर ले, ठीक कर ले, इसी का नाम होता है कि देर आए दुरुस्त आए। और कोई भी ऐसा काम पहले आपको जीवन में व्यक्ति को करना ही चाहिए, उसको इस दिन का इंतजार करने ना पड़े कि देर आए दुरुस्त आए, बल्कि हमेशा दुरुस्त ही रहे तो ज्यादा उचित है। क्योंकि आजकल समाज और माहौल ऐसा बन गया है कि ज्यादातर लोग गलत संगतों को अपना लेते हैं और उसके बाद घर को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को परेशान करते हैं, और सब कुछ खोद के होते हैं, सब कहीं होश आता है, सब तो बहुत देर होती होती है। कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसे दुरुस्त आने से ज्यादा कुछ नहीं होता है जब सब होके होश में आए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि होता है, देखा जाता है कि कई बार हम गलत रास्ते पे चल देते हैं, गलत संगति को अपना लेते हैं, लेकिन समय से पूर्व ही अगर हम उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आ जाएं, तो उसे कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और जो भी लोग गलत रास्तों पे हैं या फिर कुछ भी सोचते हैं कि ये गलत है जो नहीं होना चाहिए, तो वो अभी भी सही रास्ते पे आ सकते हैं, उसी को देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं। तो लाल मोहम्मद अंसारी जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, इसका एक गीत है, उसके रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, फिर इश्क मनाती हूं, ये भी सुन
0: लीजिए। जी लाल मोहम्मद अंसारी जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जिला बरेली थाना मेरगंज पोस्टोरोरे ग्राम रसूलपुर मामबारे के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ मैम।
0: अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है देर आए दुरुस्त आए। क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर हम अपना काम लेकर चलते हैं या किसी काम को हम अपने मन में विचार रख के चलते हैं और वो काम अगर हमारा सही समय पर अगर कुछ लेट होता है पर अगर कुछ ठीक हो जाता है तो मैं यही कहूँगा कि हमारा देर आए दुरुस्त आए और हमारा काम सही सफल हो गया।
0: बिल्कुल, काम पूरा होना चाहिए और इंसान सही सलामत होना चाहिए। उसी को कहते हैं कि भले ही आप कभी इधर उधर भटक जाएं रास्ते से लेकिन कुछ समय बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो अल्ताफ हुसैन जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: आज मैं मूवी है सपने साजन के।
0: जी,
1: कभी भूला कभी याद किया।
0: ठीक है अल्ताफ जी, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी आपका
0: जी आकाशवाणी आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप कौन बोल रहे हैं अपना नाम बताइए
1: जी कस्बा सीकर से गुड्डू इदरीसी बोल रहा है
0: गुड्डू इदरीसी जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा आज का विषय है देर आए दुरुस्त आए क्या कहना चाहेंगे आप
1: इन सब सर मैं यही कहना चाहूंगा अगर आपको भी गलती हो गई सर या किसी के साथ आपने जैसे की कोई बात तो उसका बतावा करना चाहिए इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए हमने ये काम किया सही है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने की गलतियाँ हम सभी से होती है लेकिन उसको सही समय पर सुधार लेना ही देर आए दुरुस्त आए कहलाता है
1: गलती को स्वीकार करना चाहिए और आगे को ना करने के लिए सोचना चाहिए इंसान
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने गुड्डू इदरीसी जी आज आपकी कॉल लगी है कौन से फिल्म का गाना सुनेंगे
1: जी सनम बेवफा का है सर अल्लाह का बंदा
0: ठीक है सर हम भेज रहे हैं आपके पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पे कॉल करने के लिए धन्यवाद

स्वीकार्य है। अगला कमेंट हमें भेजा है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ ने। ये लिखते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, वैसे तो ये बहुत प्राचीन कहावत है। इसे ये भी कह सकते हैं कि सुबह का भटका शाम को घर आए तो भटका नहीं कहते। आपने ये सवाल किया है, ये सवाल नहीं कहावत है। इसका मतलब होता है कि अगर हम किन्हीं कारणों से राह भटक जाएं और सही समय पर मंजिल तक पहुंच जाएं तो वो भटका रहा का नहीं होता। जैसे बारिश की आवश्यकता होती है, सभी किसान भाई बारिश का इंतजार करते रहते हैं लेकिन फिर भी बारिश नजर नहीं आती। लेकिन सही समय पर किसानों के लिए बारिश आए तो वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए सही समय पर जो कार्य पूर्ण हो जाए उसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ रामकुमार रेवाड़ जी, लेकिन ये प्रश्न नहीं था, ये एक विषय था जिसके बारे में हम अपने विचार साझा करते हैं। हमारे सभी श्रोता हमारे साथ अपने विचार साझा करते हैं, इसी विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। प्रवीण चौहान जी ने ये लिखते हैं कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना बहुत जरूरी होता है। देर हो सकती है लेकिन कोशिश करना जारी रखें और एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हमारे और भी कई सारे श्रोताओं ने काफी कुछ लिखा है लेकिन इन्होंने इस विषय के बारे में ना लिख के अपनी फरमाइशें लिखी हैं। तो दोस्तों ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये आधारित एक विषय पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें आप हमें अपने विचार लिखकर भेजते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जिसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं दोपहर को 2:30 से। तो आप चाहे कॉल करें चाहे अपने विचार हमें हमारे फेसबुक का जो पोस्ट होता है उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। हम ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे और जिन श्रोताओं के इस बार शामिल नहीं हो पाए हैं कमेंट्स तो वो अगली बार ज़रूर शामिल करें क्योंकि समय सीमित होता है। फिलहाल हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम में हम आप सभी के कमेंट्स जरूर शामिल करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

104.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है देर आए मगर दुरुस्त आए। इसी विषय पर हमारे फेसबुक पोस्ट पर भी हमारे कुछ श्रोताओं ने कमेंट किए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कमेंट है, क्या लिखा है इन्होंने। कार्यक्रम का ये पहला कमेंट हमें भेजा है गंगा सिंह रावत जी ने रामपुर रोड हल्द्वानी से। ये लिखते हैं कि कभी कभी जो चीजें लेट हो जाती हैं ना, वो सबसे बढ़िया होती हैं, चाहे वो काम हो, मौका हो या कोई जवाब। इसलिए कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली। इसी विषय पर अपने विचार भेजे हैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव बैंक सेंटर चनहिटी के पास बरेली कैंट से। ये लिखते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। किसी की नौकरी लगने में कई साल लग गए और आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई अच्छा काम देर से हो और सही तरीके से हो तो वो देरी

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। आज का विषय है देर आए दुरुस्त आए। इसी विषय पर हमारे एक और श्रोता ने भी अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। इनका नाम है राहुल पाल, हरी मोहन पाल, अंजना, ज्योति और लक्ष्य बघेल लक्षु, और इनका पता है ग्राम गोपी खिरिया, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इसका मतलब है कि भले ही किसी काम को करने में देरी हो गई हो, लेकिन अगर वह सही तरीके से और पूरी तरह ठीक से हुआ हो तो वो बेहतर होता है।